0: रे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
1: पवन करे शोर।
0: हाँ जिया।

印度的李光博电台，听众朋友们，下一首歌是也是穆凯什唱的，请收听。

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की मात्र एक झलक दिखाकर लौटा लाने में, जैसा राजा दशरथ ने चाहा था, सुमंत्र सफल नहीं हुए। शोक और संताप की मूर्ति सुमंत्र महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर उस करुण दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम ने कहला भिजवाया है कि पिता के अनुग्रह से वन में उन्हें सभी प्रकार से सुख मिलेगा। पिता की आज्ञा का पालन कर वे सकुशल वापस लौट आएंगे। नगरवासियों के लिए उन्होंने विनय पूर्वक अनुरोध किया है कि वही लोग उनके परम हितैषी होंगे जो सब प्रकार से महाराज को सुखी और संतुष्ट रखेंगे। प्रिय अनुज भरत के लिए संदेश है कि राज्याभिषेक हो जाने के बाद भी वे नीति के मार्ग पर चलकर मन, वचन और कर्म से प्रजा का पालन और माताओं का सम्मान करें।

0: Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, penyiar Anda Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi, selamat tinggal, sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.
1: Namaskar. आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और

0: न चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए पुनः कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। टाटा ट्रस्ट ने इसे अवैध बताया। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
1: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल 2 प्रतिद्वंदी गुट हैं और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। लोकसभा से तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले, जबकि राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: सम्मेलन में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में देश के विकास से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इनमें अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्तीय व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
4: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.

0: newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान कल से शुरू हुआ। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर और आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में प्रस्तुत है नक्सलवाद के अंत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट।
2: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलवाद के अंत के बाद अब बंदूक की गोलियों की जगह एक बार फिर स्कूल की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। बस्तर अंचल में सुरक्षा कैंपों को बदलकर शहीद वीर गुंडा धुर सेवा डेरा के नाम से आधुनिक जन सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन बदलते बस्तर की तस्वीर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां कभी टेरर था वहां अब टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
3: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था वहाँ टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
2: सरकार की ठोस इच्छा शक्ति का ही परिणाम रहा है कि बस्तर में हजारों की संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों को अब कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर जिले के ऐसे ही एक आत्मसमर्पित माओवादी लखमू पोयाम ने बताया कि नक्सली संगठन में काम करते हुए उन्हें हमेशा जान का डर बना रहता था, लेकिन अब वे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं।
4: अभी तो यहाँ सरेंडर करने के बाद हम लोग यहाँ रहते हैं, अभी अच्छा लग रहा है। उधर रहते समय तो कभी मर जाना है, गोली लगेगा बोल के उधर डर था। अभी यहाँ आराम से खाना है, पीना है, सोना है, काम करना है, सब लोगों के साथ मिलना है, ऐसे अच्छा लग रहा है यहाँ।
2: लखमू पोयाम जैसे सैकड़ों आत्मसमर्पित माओवादियों की यह कहानी बताती है कि बस्तर में नक्सलवाद के अंत के बाद अब विकास का सूर्योदय हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
0: भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया है। टाटा सन्स

0: के बोर्ड ने कल 4-1 के बहुमत से उनके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट ने इस मतदान को अवैध बताया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले दो दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम, माहे, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार।
1: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत दी है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने शानदार 108 और संजू सैमसंग ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उधर जापान में एशियाई खेलों में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से आज सुबह 10:30 से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी।
0: जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले के मेंढर इलाके के बेहरी कासब में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन की खबर आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया का भारत पर बढ़ रहा भरोसा, वैश्विक बाजार में पहुंच रही देश की सेमीकंडक्टर चिप। जनसत्ता के शब्द हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को भरोसेमंद चिप विनिर्माण का केंद्र बना रही है। पंजाब केसरी लिखता है, भारतीय चिप की दुनिया भर में सप्लाई शुरू, दूसरे चरण में लक्ष्य $30.5 मिलियन। अमरीकी संसद में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाले विधेयक के पारित होने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ट्रंप को मिला 100% टैरिफ वाला हथियार। अमर उजाला लिखता है, टैरिफ पर अमरीका की दो टूक, भारत अपने हित खुद तय करेगा। हिंदुस्तान ने 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नए नियम की खबर दी है। पत्र लिखता है, पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाने वाला कानून 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा। पंजीकरण में 2 वर्ष से अधिक की देरी होने पर पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, पढ़ाई के बाद नौकरी में काम आएगी अपार आईडी, डिग्री देख सकेंगे नियुक्ता, मंत्रालय ने निजता नीति बदली। पंजाब केसरी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के परीक्षा कार्यक्रमों के जारी होने पर लिखा है, जेईई मेन, यूजीसी नेट परीक्षा की डेट शीट जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है, सीसीटीवी की निगरानी में बिके दवा, सरकार लाई प्रस्ताव, फुटकर दुकानों में ही सीसीटीवी अनिवार्य होगा, थोक दवा दुकानों को बाहर रखा गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस, इलेक्शन कमीशन फ्रीजेस तृणमूल कांग्रेस नेम एंड सिंबल, आस्क्स राइवल फैक्शंस टू पिक न्यू वन।

0: and Public Service Centers named Shaheed Veer Gundadhur Seva Dera. Bastar Olympics and Bastar Pandum reflects the changing picture of Bastar. Prime Minister Narendra Modi said that areas which once witnessed terror are now providing opportunities for talent.
1: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है. जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे आप, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े. बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है. यानी जहां कभी टेरर था वहां टैलेंट को अवसर मिल रहा है.
0: द गवर्नमेंट्स फर्म रिजॉल्व हैज रिजल्टेड इन थाउजेंड्स ऑफ माओइस्ट सरेंडरिंग इन बस्तर. एफर्ट्स आर नाउ बीइंग मेड टू मेक दीज फॉर्मर माओइस्ट इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट बाय प्रोवाइडिंग देम स्किल ट्रेनिंग. वन सच फॉर्मर माओइस्ट लखमू पोयाम ऑफ बस्तर डिस्ट्रिक्ट सेड दैट व्हाइल वर्किंग विद द नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशन ही ऑलवेज लिव्ड अंडर द फियर ऑफ लूजिंग हिज लाइफ. ही इज नाउ अंडरगोइंग स्किल ट्रेनिंग एंड लीडिंग अ पीसफुल लाइफ.
2: अभी तो यहाँ सरेंडर करने के
0: आफ्टर सरेंडरिंग वी आर लिविंग हेयर नाउ एंड वी फील गुड. व्हेन वी वर देयर वी ऑलवेज लिव्ड इन फियर दैट वी माइट बी किल्ड और शॉट. हियर वी कैन ईट ड्रिंक स्लीप एंड वर्क पीसफुली एंड मीट एंड इंटरेक्ट विद एवरीवन. वी फील गुड लिविंग हियर. द स्टोरीज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सरेंडर्ड माओइस्ट लाइक लखमू पोयाम शो दैट फॉलोइंग द एंड ऑफ नक्सलिज्म अ न्यू डॉन ऑफ डेवलपमेंट इज इमर्जिंग इन बस्तर. विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी न्यूज, रायपुर.
3: दिस इज आकाशवाणी गिविंग यू द न्यूज.
4: स्टे अपडेटेड, स्टे अहेड. फॉलोअर्स ऑन एक्स @ AIR न्यूज अलर्ट्स एंड ऑन इंस्टाग्राम @ AIR न्यूज अलर्ट्स.
3: External Affairs Ministry has notified the Passport Amendments Rules 2026, amending the Passport Rules 1980. The amendment provides that an ordinary passport with 36 pages issued to a child under 15 years of age will be valid for 5 years or until they turn 18 years of age, whichever is earlier. Hindustan Aeronautics Limited will hand over light combat aircraft, Tejas Final Operational Clearance twin-seater trainers and HTT 40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force in Bengaluru today. It will also hand over Dhruv Next Generation helicopters to Pawan Hans Limited, a public sector undertaking. The ceremony will be attended by Defence Minister Rajnath Singh and Minister of Civil Aviation Ram Mohan Naidu. The Defence Ministry said that induction of these platforms is another step towards strengthening the indigenous capabilities and reducing dependence on foreign sources. Chief of Army Staff General Dhiraj Seth visited Russian Land Forces headquarters as part of his three-day official visit to Russia. The interaction focused on deepening military cooperation and expanding training engagements. They also focused on strengthening capability development between the two armies. The Defence Ministry said the visit reflects the importance attached by both the countries to sustained military diplomacy and army-to-army engagement. The Trump administration has approved visas for top Iranian officials, including the president and foreign minister, to attend next week's UN General Assembly high-level meeting in New York, even as the two countries are locked in a stalemated war. A report.
5: The State Department said that it has approved visas for Iran's core delegation along with essential staffers to participate in the UN meetings. The core delegation include President Masoud Pezeshkian and Foreign Minister Abbas Araghchi. The move is unusual due to the more than 6-month-long conflict between Iran and the United States and no sign that agreement to reopen the Strait of Hormuz. It also comes as Iranian-backed Houthi rebels in Yemen have step-up attacks on Saudi infrastructure and shipping in the Red Sea, another major maritime route in the region where impediments have helped drive a surge in global oil prices. Vishal Kumar for Akashvani News, Delhi.
3: Russia and China vetoed a United Nations resolution that would have authorized UN experts to keep monitoring sanctions that were reimposed against Iran last year over its nuclear program. The UN Security Council sanctions are still in effect, which frees Iran's assets abroad, halt arms deals with Tehran and penalize any development of Iran.

0: दी है और हरीफ ग्रुपों से कहा है कि वो मगरबी बंगाल ज़िमनी इंतखाबात के लिए नए नाम और नए चुनाव निशान का इंतखाब करें। गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने के तरमीमी बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की पहली मीटिंग आज होगी। इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी NTA ने अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के जून में कराए गए UGC NET इम्तिहान की हतमी आंसर कीज जारी कर दी हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने बिहार, ओडिशा, मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खत्ते, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने आखिरी T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से करारी शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। इंतखाबी कमीशन ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दोनों हरीफ ग्रुपों से कहा है कि वो मगरबी बंगाल में आइंदा होने वाले असेंबली जिमनी चुनाव के दौरान पार्टी का नाम और चुनाव निशान इस्तेमाल न करें। अपने उबूरी हुक्म में कमीशन ने दोनों ग्रुपों से कहा है कि वो आज दिन में 11 बजे तक अपने अपने ग्रुपों के नाम पेश करें ताकि कमीशन उन्हें तस्लीम कर सके। चुनाव कमीशन ने ममता बनर्जी और अरूप रॉय की जेर क्यादत पार्टी के दोनों ग्रुपों के रहनुमाओं के मौकफ की समात के बाद उबूरी हुक्म जारी किया। बाद में कमीशन ने कहा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दो ग्रुप हैं जिनमें से एक की क्यादत ममता बनर्जी और दूसरे की जनाब अरूप रॉय कर रहे हैं और दोनों ही ग्रुप अपने आप को असल पार्टी होने का दावा कर रहे हैं। मगरबी बंगाल में नंदीग्राम और रेगीनगर सीटों के लिए असेंबली जिमनी चुनाव अगले महीने की 6 तारीख को होना है। गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने के तरमीमी बिल 2026 से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की पहली मीटिंग आज होगी। उम्र दाखिला की वजारत के नुमाइंदे बिल की दफात के बारे में कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने 12 अगस्त को गैर मुल्की अदियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल को मजीद जांच के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द करने की मंजूरी दी थी। मस्कूरा बिल में गैर मुल्की अदियात को मुंजबित करने से मुतालिक 2010 के एक्ट में तरमीम की बात कही गई है। इसका मकसद गैर मुल्की अदियात के इस्तेमाल को और ज्यादा शफाफ और जवाबदेह बनाना है। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में लोकसभा के 21 मेंबर हैं जिन्हें स्पीकर ने नामजद किया है। इसके अलावा इसमें राज्यसभा के भी 10 अरकान हैं जिन्हें चेयरमैन मौसूफ ने नामजद किया है। लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट संजय जायसवाल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की सरबराही करेंगे। कमेटी में शामिल लोकसभा के सरकर्दा अरकान में तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं, जबकि राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनिका गुरुस्वामी हैं। कमेटी को अपनी रिपोर्ट मौसम सरमा के इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक ऐवान में पेश करना है। दिल्ली से विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सप्लाई चेन को बतौर हथियार इस्तेमाल किए जाने के दरमियान भारत को आलमी सतह पर काबिल भरोसा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मरकज करार दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया नए और काबिल भरोसा मैन्युफैक्चरिंग मकामात तलाश रही है और मुल्क इस जरूरत की खातिर मुसलसल खुद को तैयार कर रहा है। उन्होंने उजागर किया कि हम अहम सनतों में भारत की तरक्की आलमी सप्लाई चेन को मुस्तहकम करेगी और दुनिया भर में सप्लाई चेन से मुतालिक चैलेंजों के दरमियान नए इम्कानात पैदा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कल नई दिल्ली में यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही।
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है, और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
0: इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी NTA ने अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के जून में कराए गए UGC NET इम्तिहान की हतमी आंसर कीज जारी कर दी हैं। ये NTA की वेबसाइट UGCNET.NTA.NI

0: ecsi.in पर दस्तियाब हैं। ये इम्तिहान मुल्क के 272 शहरों में 454 मराकज पर इस महीने की 9 और 10 तारीख को कराया गया था। एजेंसी ने इम्तिहान कराने के ताल्लुक से 16 अगस्त को नोटिस जारी किया था। उम्मीदवार अपने अपने मजामीन की हतमी आंसर कीज देखने के लिए अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं। एनटीए ने सभी उम्मीदवारों को यह सलाह दी है कि वो इम्तिहान से मुतालिक ताजा जानकारी के लिए यूजीसी एनईटी वेबसाइट को बाकायदगी से देखते रहें। किसी भी तरह की वजाहत के लिए उम्मीदवार वेबसाइट पर राब्ते के लिए फराहम की गई तफसीलात के जरिए एनटीए हेल्प डेस्क से रुजू कर सकते हैं। हतमी आंसर कीज का जारी करना यूजीसी एनईटी के इवेल्युएशन के अमल में एक अहम कदम है, जिसके जरिए भारतीय यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदों और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अहलियत का तायुन किया जाता है। वजारत खजाना नई दिल्ली में विकसित भारत की जानिब भारत के सफर की माली एयानत पर 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करेगी, जिसका आगाज आज से हो रहा है। वजारत ने कहा है कि यह कॉन्फ्रेंस रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़रा खजाना और फाइनेंस सेक्रेटरीज के लिए होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन मुख्तलिफ वज़रा आला और रियासतों के वज़रा खजाना के हमरा कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी अवामी जिंदगी के 25 बरस मुकम्मल कर लिए हैं। उनका यह सफर अवामी खिदमत के जरिए मुल्क की खिदमत के मंत्र पर मबनी है और यह सिलसिला आज तक जारी है। खिदमत और अच्छी हुकुमरानी के नजरिए से तहरीक पाकर हुकूमत 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के हदफ के लिए मुसलसल कोशां हैं। सबकी शमूलियत वाली तरक्की और समाजी तौर पर बाख्तियार बनाए जाने के अहद के तहत लोगों की जिंदगियों में यकसर तब्दीली आ रही है। इस सिलसिले में आज हम नक्सलिज्म के खात्मे पर एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ के बस्तर खित्ते में नक्सलिज्म के खात्मे के बाद गोलियों की आवाजों के बजाय एक बार फिर स्कूल की घंटियों की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। बस्तर खित्ते में सिक्योरिटी कैंप शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के नाम से जदीद अवामी खिदमात के मराकज में बदल गए हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पांडुम बस्तर की बदलती हुई तस्वीर की अक्कासी कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो इलाके दहशतजदा थे वो अब हुनर के लिए मौके पैदा कर रहे हैं।
2: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था वहां टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
1: रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजारत खारजा ने 1980 के पासपोर्ट जाब्तों में तरमीम करते हुए पासपोर्ट से मुतालिक तरमीमी जाब्तों 2026 को नोटिफाई कर दिया है। इसके तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी किया गया 36 सफहात पर मुश्तमिल एक आम पासपोर्ट 5 साल तक या उसकी उम्र 18 साल होने तक जो भी पहले हो काबिल कबूल रहेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में हल्के जंगी तैयारे तेजस फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस ट्विन सीटर ट्रेनर्स और HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भारतीय फिजाइया को सौंपेगी। वो पवन हंस लिमिटेड को आइंदा सिलसिले के ध्रुव हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस तकरीब में वजीर दिफा राजनाथ सिंह और शहरी आवाबाजी के वजीर राममोहन नायडू शिरकत करेंगे। वजारत दिफा ने कहा है कि इन प्लेटफॉर्म्स को शामिल किया जाना अंदरून मुल्क सलाहियतों के इस्तेहकाम और गैर मुल्की जराए पर इन्हिसार को कम करने की जानिब एक और कदम है। दिफाई अमले के सरबराह जनरल धीरज सेठ ने रूस के अपने 3 रोजा सरकारी दौरे के तहत रूस की जमीनी अफवाज के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। इस राबते में फौजी इश्तराक को मुस्तहकम करने और तरबती राबतों को वसत देने पर तवज्जो मरकूज की गई। दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान सलाहियत साजी को मजबूत करने पर भी तवज्जो दी गई। अपनी आमद पर जनरल धीरज सेठ को रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद में उन्होंने मॉस्को में नामालूम फौजी के मकबरे पर खराज अकीदत पेश किया। امریکہ اور ایران کے درمیان محاذ آرائی کے تناظر میں ٹرمپ انتظامیہ نے نیویارک میں اگلے ہفتے ہونے والے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اعلی سطح کے اجلاس میں

0: दोबारा आयद की गई पाबंदियों की निगरानी जारी रखने का अख्तियार मिल जाता। ईरान के एटमी प्रोग्राम के मामले पर पिछले साल ये पाबंदियां फिर से नाफिज की गई थीं। अक्वामे मुत्तहदा की सलामती कौंसिल की पाबंदियां अब भी नाफिज हैं, जिनके तहत बैरून मुल्क ईरान के असासों पर रोक, ईरान के साथ हथियारों के समझौतों की मौतली और ईरान के बैलिस्टिक मिजाइल प्रोग्राम के ताल्लुक से ताजीरी कार्रवाई करना शामिल है। पाकिस्तानी फौजियों ने बलूचिस्तान में 3 शहरियों को हलाक कर दिया है। इंसानी हकूक की एक अहम तंजीम ने इंकशाफ किया है कि 3 लाशें जिला ग्वादर में दनुक और कुलदन इलाके में मिली हैं। ये ताज़ा वाकया सूबे में मावराय अदालत कत्ल और जबरन गुमशुदगी की लहर के पस मंजर में पेश आया है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज बिहार, उड़ीसा, जेली हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने आज उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। मौसमियात की एजेंसी ने आज कौमी राजधानी में आमतौर पर मतला अबरालूद रहने की पेशगोई की है। मर्दों के क्रिकेट में कल रात नई दिल्ली में तीसरे और आखिरी T20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से करारी शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए थे। इसके जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 14 ओवर्स और 1 गेंद में महज 94 रन पर आउट हो गई। इससे कबल अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों सेमीकॉन इंडिया 2026 के इफ्तिताह की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम के हवाले से सुर्खी लगाई है, मुल्क में सेमीकंडक्टर का निजाम तेजी से फैल रहा है, दूसरे फेज के लिए 13.5 अरब डॉलर सरकार खर्च करेगी। अखबार इंकलाब की शह सुर्खी है, अमरीकी टैरिफ पर भारत का रद्दअमल, 140 करोड़ लोगों के मफादात से कोई समझौता नहीं। TMC के इंतखाबी निशान और नाम के इस्तेमाल पर इंतखाबी कमीशन के जरिए रोक लगाए जाने की खबर को भी अखबार ने नुमाया किया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 2 दहशतगर्दों की हलाकत की खबर को रोजनामा इंकलाब ने कौमी सफ़े पर जगह दी है। अखबारात की अहम बैनुल अक़वामी खबरें इस तरह हैं, हौसियों के खिलाफ सऊदी अरब का बड़ा हमला, 1 शहरी हलाक, मवासलाती टावर तबाह।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके चुनाव निशान पर रोक लगा दी है और हरीफ ग्रुपों से कहा है कि वो मगरबी बंगाल जिमनी इंतखाबात के लिए नए नाम और नए चुनाव निशान का इंतखाब करें। गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने के तरमीमी बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की पहली मीटिंग आज होगी। इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी NTA ने अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशोलॉजी के जून में कराए गए UGC NET इम्तिहान की हतमी आंसर कीज जारी कर दी हैं। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने आखिरी T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से करारी शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वर गंगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पीहू पांडे द्वारा गाया राग मियाँ की तोड़ी। सहयोगी कलाकार रहेंगे तबले पर निमित जैन और हारमोनियम पर संगत रहेगी क्षितिज सिंह की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर गंगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आपने सुना पीहू पांडे का गायन, राग था मियाँ की तोड़ी। सहयोगी कलाकार थे तबले पर निमित जैन और क्षितिज सिंह थे हारमोनियम पर। श्रोताओं, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान सामाजिक जीवन। आलेख एवं स्वर मधु शर्मा।
1: महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक काल माना जाता है। वे वर्ष 1893 में एक कानूनी मामले के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उस समय उन्होंने वहां रहने वाले भारतीयों और अन्य एशियाई

लोगों के साथ होने वाले जातीय भेदभाव, सामाजिक अन्याय और अमानवीय व्यवहार को निकट से देखा। यही अनुभव उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया और वे केवल एक वकील न रहकर समाज सुधारक, मानव अधिकारों के रक्षक तथा विश्व के महान नेताओं में से एक बन गए। दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए लगभग 21 वर्षों ने गांधी जी के व्यक्तित्व, विचारों और सामाजिक जीवन को नई दिशा प्रदान की। वास्तव में यदि दक्षिण अफ्रीका का प्रवास न होता तो संभवतः दुनिया को वह महात्मा गांधी नहीं मिलते जिन्हें आज सत्य और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अधिकांश भारतीय मजदूर, छोटे व्यापारी या कर्मचारी के रूप में वहां कार्य करते थे। उन्हें रंग भेद की नीति के कारण अनेक प्रकार के अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। सार्वजनिक स्थानों, रेलगाड़ियों, न्यायालयों, विद्यालयों तथा सरकारी कार्यालयों में भारतीयों को समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें यूरोपीय लोगों से निम्न समझा जाता था और कई स्थानों पर उनके प्रवेश पर भी प्रतिबंध था। भारतीयों को मतदान का अधिकार नहीं था तथा उन्हें अनेक कठोर कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता था। इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था ने गांधी जी को भीतर तक झकझोर दिया। स्वयं गांधी जी भी इस भेदभाव के शिकार बने। पीटर मेल्ट्सबर्ग रेलवे स्टेशन की प्रसिद्ध घटना में उनके पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट होने के बावजूद केवल भारतीय होने के कारण उन्हें रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया। उन्हें ठंडी रात स्टेशन पर बितानी पड़ी। इसके अतिरिक्त उन्हें अदालत में पगड़ी उतारने के लिए कहा गया और कई होटलों में ठहरने से भी मना कर दिया गया। इन घटनाओं ने गांधी जी के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाई। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि वहां रहने वाले सभी भारतीयों और पीड़ित लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। गांधी जी ने सबसे पहले भारतीय समुदाय को संगठित करने का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने अनुभव किया कि बिखरा हुआ समाज अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक बनाना तथा सरकार तक उनकी समस्याओं को पहुंचाना था। गांधी जी ने लोगों को जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट रहने का संदेश दिया। उनके प्रयासों से भारतीय समाज में आत्मविश्वास, संगठन और नेतृत्व की भावना विकसित हुई। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का सामाजिक जीवन अत्यंत सादा, अनुशासित और आदर्शवादी था। वे सादगी, आत्मनिर्भरता और श्रम की गरिमा में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। इसी विचार को व्यवहार में उतारने के लिए उन्होंने फिनिक्स आश्रम तथा बाद में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। इन आश्रमों में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। प्रत्येक व्यक्ति खेती करता था, सफाई करता था, भोजन बनाता था, अन्य कार्यों में समान रूप से भाग लेता था। वहाँ जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी अथवा ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। इन आश्रमों ने सहयोग, समानता और आत्मनिर्भरता का एक आदर्श समाज प्रस्तुत किया। गांधी जी का विश्वास था कि किसी भी समाज का वास्तविक विकास केवल आर्थिक प्रगति से नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों से होता है। इसीलिए उन्होंने सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम, ईमानदारी, अनुशासन और सेवा को जीवन का आधार बनाया। वे स्वयं इन सिद्धांतों का पालन करते थे और दूसरों को प्रेरित करते थे। उनका मानना था यदि व्यक्ति का चरित्र मजबूत होगा तो समाज और राष्ट्र स्वतः मजबूत बनेंगे। उन्होंने लोगों को सत्य बोलने, ईमानदारी से कार्य करने तथा दूसरों के प्रति सम्मान और करुणा का भाव रखने की शिक्षा दी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने शिक्षा को भी सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम माना। उनका विचार था शिक्षा केवल पढ़ना लिखना नहीं है बल्कि अच्छे चरित्र, अनुशासन और जिम्मेदारी का विकास भी है। उन्होंने बच्चों और युवाओं को व्यवहारिक शिक्षा देने पर बल दिया। आश्रमों में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेती, सफाई, हस्तकला और अन्य उपयोगी कार्य भी सिखाए जाते थे। इससे उनमें आत्मनिर्भरता, श्रम के प्रति सम्मान और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती थी। गांधी जी ने स्वच्छता को भी सामाजिक सुधार का आवश्यक अंग माना।
वे स्वयं आश्रमों की सफाई करते थे और शौचालय साफ करने में भी संकोच

0: नहीं करते थे। उनका मानना था कि स्वच्छता केवल स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि सभ्य समाज की पहचान भी है। उन्होंने लोगों को ये संदेश दिया कि किसी भी प्रकार का श्रम छोटा नहीं होता और प्रत्येक व्यक्ति को समाज की स्वच्छता एवं व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने सत्याग्रह की अवधारणा विकसित की। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह और अन्याय के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष। जब सरकार ने भारतीयों पर अन्यायपूर्ण पंजीकरण कानून लागू किया तब गांधी जी ने शांतिपूर्ण विरोध का मार्ग अपनाया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अन्यायपूर्ण कानूनों का पालन न करें, चाहे इसके लिए जेल ही क्यों न जाना पड़े। हजारों भारतीय उनके नेतृत्व में इस आंदोलन से जुड़े। अनेक लोगों ने जेल यात्राएं की, कठिनाइयां सहन की, लेकिन किसी ने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। अंततः सरकार को कई कठोर कानूनों में परिवर्तन करने पड़े। गांधी जी ने महिलाओं की भूमिका को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उस समय अधिकांश महिलाएं सार्वजनिक जीवन से दूर रहती थीं, परंतु गांधी जी ने उन्हें सामाजिक आंदोलनों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। अनेक महिलाओं ने सत्याग्रह में भाग लिया, जेल गईं और समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय रहीं। गांधी जी का विश्वास था कि समाज का विकास तभी संभव है जब स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से राष्ट्र निर्माण में भाग लें। धार्मिक सहिष्णुता गांधी जी के सामाजिक जीवन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष था। दक्षिण अफ्रीका में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी तथा अन्य धर्मों के लोग रहते थे। गांधी जी ने सभी धर्मों का समान सम्मान किया। ये नियमित रूप से विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे और मानते थे कि सभी धर्म मानवता, प्रेम और सत्य का संदेश देते हैं। उन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच आपसी विश्वास, भाईचारा और सहयोग की भावना विकसित करने का प्रयास किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने प्रेस और जनमत की शक्ति का भी प्रभावी उपयोग किया। उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस पत्र के माध्यम से वे भारतीयों की समस्याओं, उनके अधिकारों, सामाजिक सुधार संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाते थे। इससे भारतीय समुदाय में जागरूकता बढ़ी और उनके संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों ने गांधी जी को यह सिखाया कि किसी भी अन्याय का उत्तर हिंसा नहीं बल्कि सत्य, धैर्य और नैतिक साहस से दिया जा सकता है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि यदि समाज संगठित हो, अनुशासित हो और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो तो बिना हिंसा के भी बड़े परिवर्तन संभव हैं। यही सिद्धांत आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति बने। अंततः कहा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका का प्रवास महात्मा गांधी के लिए सामाजिक जीवन की आधारशिला था। यहीं उन्होंने सत्य, अहिंसा, समानता, सेवा, स्वावलंबन, धार्मिक सहिष्णुता और सत्याग्रह जैसे सिद्धांतों को व्यवहार में उतारा। उन्होंने केवल भारतीयों के अधिकारों की रक्षा ही नहीं की बल्कि संपूर्ण मानवता को न्याय, प्रेम और शांति का मार्ग दिखाया। भारत लौटने के बाद उन्होंने इन्हीं अनुभवों और सिद्धांतों के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। इसलिए दक्षिण अफ्रीका का उनका सामाजिक जीवन केवल उनके व्यक्तिगत विकास की कहानी नहीं बल्कि विश्व इतिहास में मानव अधिकार, सामाजिक न्याय और नैतिक नेतृत्व का एक प्रेरणादायक अध्याय है। आज भी उनके विचार हमें समानता, सेवा, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं तथा एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का संदेश देते हैं।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान सामाजिक जीवन। आलेख एवं स्वर मधु शर्मा।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: श्रोताओं, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: Spotlight.
1: This is Akashwani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Union Cabinet decisions. The participants are Sushma Ramachandran, Economic Analyst, and Arjun J. Chaudhary, Anchor.
2: Today our topic of discussion is on the Cabinet decision on Social Security, which is approving the enhancement of the EPFO weight ceiling from 15,000 rupees to 25,000 rupees. Let's now hear what Union Minister Ashwini Vaishnaw had to say about this.
3: हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है पीएफ प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी सितंबर 2014 में चेंज की गई थी इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए 25,000 रुपीज पर मंथ सैलरी विल बी द न्यू सीलिंग फॉर पीएफ डिडक्शन इससे करीब

0: سيدي وسادتي، تمتعنا كثيرا باستماع الأغنية العربية العراقية. الآن نتقدم إلى برنامج سبوتلايت، وكما قلت لكم إن هذا البرنامج سيكون باللغة الإنجليزية، ونستمع هذا البرنامج بعد هذا الإعلان باللغة الإنجليزية.
1: This is Arabic unit of All India Radio, and you are tuned to AIR World Service 1, available on 15,030 kHz, news on AIR app and DD Free Dish.
2: Spotlight.
3: This is Akashwani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Union Cabinet decisions. The participants are Sushma Ramachandran, Economic Analyst, and Arjun J. Chaudhary, Anchor.
4: Today our topic of discussion is on the Cabinet decision on Social Security, which is approving the enhancement of the EPFO weight ceiling from 15,000 rupees to 25,000 rupees. Let's now hear what Union Minister Ashwini Vaishnaw had to say about this.
5: हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है. पीएफ प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीस की सीलिंग रहा करती थी. ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, सितंबर 2014 में चेंज की गई थी. इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए. 25,000 रुपीज पर मंथ सैलरी विल बी द न्यू सीलिंग फॉर पीएफ डिडक्शन. इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा, जो कि 15 to 25 वाले बैंड में थे. दे विल स्टार्ट गेटिंग कवर्ड इन द

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी।

0: बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
1: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और STT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। एक रिपोर्ट।
2: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजल्टा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से AI को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि AI की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। दुष्प्रचार करने वाले पाकिस्तानी अकाउंट द्वारा प्रसारित एक फर्जी वीडियो का सरकार ने खंडन किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश को दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी और AI से निर्मित बताया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली तेजी देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 113 अंक बढ़कर 74,427 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has reaffirmed India's support for Bhutan's developmental goals and priorities during his official visit to Bhutan from the 16th to the 18th of September. Dr. Jaishankar and his Bhutanese counterpart, Leonpo Dien Thungyel, reviewed all aspects of bilateral cooperation besides regional and international issues of mutual importance. The two sides appreciated the progress in strengthening the special and multifaceted India-Bhutan partnership. Both ministers also jointly inaugurated and launched several development projects. These included the 65-bedded Gyaltsuen Jetsun Pema Mother and Child Hospital in Mongar, the Jagannathan Bridge on the Samdrup Jongkhar Trashigang Highway, and the transfer of 43 Jersey cows from India to the National Cattle Breeding Centre in Bumthang. India also handed over 54 electric vehicles to the Bhutanese government. The ministers also laid the foundation stone for the 500-kilowatt Lunana hydropower project. Northern Army Commander Lieutenant General Prateek Sharma has commended the White Knight Corps for successfully neutralizing 2 Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur. Army Commander Lieutenant General Prateek Sharma complimented White Knight Corps for their swift, precise and professional action in neutralizing 2 terrorists during Operation Sohan in Majalta area of Udhampur district. Our correspondent reports that the successful intelligence-based operation

किसी ने सच कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।

जी हाँ, घर आंगन के इस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमें FM गोल्ड 100.1 MHz पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर। और दोस्तों, प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर सुबह के बाद रात आती है तो रात के बाद फिर से नया सवेरा आता है। इसीलिए वक्त चाहे जैसा भी हो, हर हाल में मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा संगीत सुनते रहिए।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत, फिल्म थी अग्नि परीक्षा और गाया था लता मंगेशकर ने। और दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि आज है शुक्रवार यानी फ्राइडे, और आज के दिन हमारा विशेष कार्यक्रम होता है एक कदम बुजुर्गों की ओर। खास तौर पर हम विशेष कार्यक्रम लेकर आपके लिए ही उपस्थित होते हैं। अब ये बात की है तो बुजुर्गों के आज कार्यक्रम हम आपको जरूर सुनवाएंगे और अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के दिन की खास बात करते हैं। एक दिन और है आज का, वो है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, यानी कि एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ नौकरी और वेतन से जुड़ा नहीं बल्कि बराबरी, सम्मान और न्याय से जुड़ा है। वो है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। इस दिन का उद्देश्य है लोगों में ये जागरूकता फैलाना कि समान काम करने वाले के लिए यानी समान वेतन मिलना हर व्यक्ति का अधिकार है। सोचिए, अगर दो लोग एक ही काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां और योग्यता समान है, तो केवल उनके महिला या पुरुष होने के कारण उनके वेतन में अंतर क्यों हो? समान वेतन का मतलब केवल पैसे की बराबरी नहीं, ये उस सोच को बदलने की बात है जिसमें किसी व्यक्ति की मेहनत और प्रतिभा को अपने यानी उनके जेंडर के आधार पर कम या ज्यादा आंका जाता है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, खेल, प्रशासन, मीडिया, बिजनेस और हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। वे जिम्मेदारियां निभा रही हैं, नए मुकाम हासिल कर रही हैं और समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। ऐसे में उनकी मेहनत का समान मूल्य और समान सम्मान मिलना बेहद जरूरी है। हमें अपने कार्यस्थलों पर समान यानी कि अवसर को बढ़ावा देना चाहिए, और साथ में अगर हम कहीं वेतन में असमानता देखते हैं तो उस पर भी सवाल उठाने और सही बदलाव की आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जब मेहनत बराबर हो तो मूल्यांकन भी बराबर होना चाहिए और सम्मान भी। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिवस यानी कि समान वेतन दिवस पर हम संकल्प लें कि अपने आसपास समान अवसर, समान मेहनताना और समान यानी कि साथ में सम्मान की सोच को मजबूत करेंगे। तो याद रखिए, बराबरी किसी एक की जीत नहीं बल्कि पूरे समाज की तरक्की है। आइए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में गीत।

एक कदम बुजुर्गों की ओर हमारा विशेष कार्यक्रम। अब बात करते हैं कुछ बुजुर्गों से संबंधित, यानी कि बुजुर्गों से माफी और आशीर्वाद दोनों जरूरी है। कहते हैं घर में बुजुर्ग हो तो वो घर सिर्फ घर नहीं रहता, बल्कि अनुभव, संस्कार और आशीर्वाद का खजाना बन जाता है। हमारी जिंदगी में जाने अनजाने कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जिनसे हमारे माता पिता, दादा दादी या परिवार के बड़े हमसे नाराज हो जाते हैं। कभी हमारी बात का लहजा गलत हो जाता है, कभी हम उनकी किसी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, और कभी व्यवस्था के कारण उन्हें समय नहीं दे पाते। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि छोटी सी माफ़ कर दीजिए कितनी बड़ी दूरी को ख़त्म कर सकती है ये बात? बुज़ुर्गों से माफ़ी मांगना कमज़ोरी नहीं, बल्कि रिश्तों की कद्र करना है। उनके सामने सिर झुकाकर माफ़ी मांगने से हमारा सम्मान कम नहीं होता, बल्कि रिश्ते और मजबूत होते हैं, और माफ़ी के साथ साथ उनका आशीर्वाद लेना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि बुज़ुर्गों का आशीर्वाद सिर्फ खुशी नहीं देता, बल्कि जीवन के मुश्किल रास्तों पर आगे बढ़ने का हौसला देता है। तो आज एक छोटा सा काम कीजिए, घर में जो बड़े हैं उनके पास बैठिए, उनका हाल पूछिए। अगर कभी जाने अनजाने आपका दिल दुखा हो, यानी कि तो दिल से कहिए मुझे माफ़ कर दीजिए, और फिर प्यार से उनके चरण स्पर्श कहिए, और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए ये कहिए। और

तौर पर यकीन मानिए, उस पल की खुशी किसी महंगे तोहफे से कहीं ज़्यादा अनमोल होगी, क्योंकि रिश्तों में कभी कभी माफ़ी सुकून देती है और आशीर्वाद जिंदगी संवार देता है। बुजुर्गों की क्षमा में भी हमारी मुक्ति है और उनका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।

दोस्तों, आप क्या सुनना चाहते हैं? आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आपका स्वागत है, आपके विचारों का और आपकी पसंद का। आपके सुझाव आप हमें लिख के भेज सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@

0: gmail.com। और दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि जब बात हो रही है एक कदम बुज़ुर्गों की ओर की, तो उम्र बढ़ती है, रिश्तों की ज़रूरत नहीं घटती। बुज़ुर्ग हमारे घर की जड़ हैं, उन्हें समय और सम्मान दें। उनकी मुस्कान से हमारे संस्कारों की खूबसूरती है। एक कदम उनकी ओर बढ़ाएं, अपनापन उनके दिल तक पहुँचाएँ। आइए बुज़ुर्गों का हाथ थामें और उन्हें एहसास दिलाएं कि है वो हमारे लिए कितने खास हैं।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी प्यासा सावन। और अब बात करते हैं कुछ टूटते परिवार और हमारे बुजुर्गों की। आज परिवारों में वो रिश्ते हैं, लेकिन कई बार साथ होने का एहसास कम होता जा रहा है। व्यस्त जिंदगी, आपसी मतभेद, बदलती सोच के कारण संयुक्त परिवार टूटकर छोटे छोटे परिवारों में बंट रहे हैं। इस बदलाव का सबसे गहरा असर हमारे बुजुर्गों पर पड़ता है। जिन माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की परवरिश, उनकी पढ़ाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए लगा दी, वहीं उम्र के इस पड़ाव पर अक्सर वे अकेले रह जाते हैं, जब उन्हें सबसे ज्यादा अपनेपन और साथ की जरूरत होती है। बुजुर्ग हमारे परिवार की जड़ है, उनके पास अनुभव है, जीवन की समझ है, रिश्तों की जोड़ कर रखने की क्षमता है। उनकी कही हुई छोटी सी बात भी कई बार हमें बड़ी मुश्किल से में पचा सकती है। यानी कि उनके साथ बैठकर कुछ देर बातें करना, उनकी पुरानी यादें सुनना, बस उनका हाल पूछ लेना, इन छोटी छोटी चीज़ों से उनके जीवन में बहुत बड़ी खुशी आ सकती है। परिवार तभी मजबूत होता है जब उसमें हर पीढ़ी के लिए सम्मान और जगह हो। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम अपने बुजुर्गों को अकेला ना छोड़ें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी ज़रूरतों को समझें, उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि परिवार की सबसे अनमोल धरोहर है। आइए टूटते परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करें। शुरुआत करें अपने घर से, अपने बुजुर्गों का हाथ थाम कर उन्हें सम्मान और प्यार दें जिसके वे सच में हकदार हैं। आइए सुने लम्हे फिल्म से गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

और अब बात करते हैं जब मोबाइल बड़ा हो गया और बुजुर्ग छोटे। आप कार्यक्रम हमारा सुन रहे हैं एक कदम बुजुर्गों की ओर, विशेष कार्यक्रम आज हमारा आप सुन रहे हैं। तो अब ये कहना है कि एक समय था जब घर में सबसे बड़ी कुर्सी दादाजी की होती थी। सब उनसे पूछकर फैसला लेते थे। आज घर में सबसे बड़ी स्क्रीन मोबाइल की है और सबसे अकेली कुर्सी फिर भी दादाजी की ही है, क्योंकि हम सब एक ही घर में हैं, अलग अलग दुनिया में। ऐसा लगता है कि पोता रील देख रहा है, बेटा लैपटॉप पर है और दादी दरवाजे पर बैठी इंतज़ार कर रही है कि कोई उनसे दो बात कर ले। हम कहते हैं बुजुर्ग टेक्नोलॉजी नहीं समझते, सच ये है हमने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। क्या हमने कभी 10 मिनट निकालकर अपने पिता को वीडियो कॉल करना सिखाया? क्या माँ को सिखाया कि यूट्यूब पर भजन कैसे सुनते हैं? उन्हें डिजिटल दुनिया में अकेला मत छोड़िए, उन्हें व्हाट्सएप पर फोटो भेजिए, उन्हें फ़ोन मिलाना सिखाइए। जब वो आपके दोस्त से वीडियो कॉल करेंगे तो उनकी आंखों में जो चमक आएगी वो किसी भी लाइक से सबसे बड़ी होगी। तो मोबाइल से जुड़ने के लिए बना था, यानी कि दूरी के लिए नहीं। तो आज से एक नियम बनाइए, रोज 10 मिनट बिना मोबाइल के और सिर्फ बुजुर्गों के नाम।

और अब बात करते हैं कुछ यानी कि दवा से ज़्यादा दुआ, सेहत और सम्मान की। हम सोचते हैं बुज़ुर्गों को सबसे अच्छी दवा चाहिए, सबसे बड़ा अस्पताल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर उससे भी पहले उन्हें कुछ और भी चाहिए। उन्हें समय पर खाना चाहिए, रोज़ 20 मिनट की सैर चाहिए और प्यार भरी बातें चाहिए। हमारे पिताजी के घुटनों में दर्द है, हम दर्द की दवा ला देते हैं, पर क्या हमने कभी उन्हें फिजियोथेरेपी के लिए ले जाने के लिए जिद की? क्या सुबह उनके साथ सैर पर गए हम सब? नहीं, बुजुर्गों की सेहत सिर्फ शरीर की नहीं, सम्मान की भी है। जब हम उन्हें अरे आपसे नहीं होगा कहकर रोक देते हैं तो उनका मन सबसे ज्यादा दुखता है। उन्हें छोटा बच्चा मत समझिए, उन्हें सहारा दीजिए, बेसहारा मत बनाइए। हाथ पकड़ कर चलाइए, हाथ पकड़ कर बिठाइए मत। एक कदम बुजुर्गों की ओर का मतलब है उनकी दवा का टाइम याद रखना, उनके चश्मे को साफ कर देना, उनके जूतों में कील अगर कोई है तो वो भी देख कर निकाल देना। तो याद रखिए, दवा शरीर ठीक करती है, पर दुआ और सम्मान आत्मा को ठीक करता है। और बुजुर्गों की दुआ में सबसे बड़ी कोई दवा नहीं, यानी कि उनकी दुआओं में भी हमारी ही जिंदगी बसी हुई है।

और अब बात करते हैं जो एक बड़े पेड़ के समान होते हैं, वो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो मुश्किलों में साथ खड़े होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी छाया में सब सुरक्षित होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो ढाल बन के खड़े होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनसे सब रिश्ते होते हैं, और वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनसे सब खुश होते हैं, और वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं यानी हमारे बुजुर्ग ज्ञान और अनुभव का खजाना है। उन्होंने ही तो सिखाया है प्यार और रिश्तों को कैसे अपनाना है। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में गीत फिल्म।

दोस्तों बात करते हैं कुछ स्वच्छता की। जी हाँ, जब हवा की बात हो रही है तो जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ स्वास्थ्य और खुशहाली अपने आप चली आती है। स्वच्छता सिर्फ हमारे घर की सफाई तक सीमित नहीं बल्कि हमारे आसपास के वातावरण, हमारी गलियों, सड़कों, नदियों, पूरे देश की जिम्मेदारी है। हमारा भारत तभी स्वस्थ और समृद्ध बन सकता है जब हम अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, सार्वजनिक स्थानों को गंदा ना करें और छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव की शुरुआत करती हैं।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंग्याल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंग्याल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंग्याल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू एफओसी ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान के वायुसेना में शामिल होने से सैन्य पायलट प्रशिक्षण में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से एआई को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि एआई की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर अधिकारियों और लोगों के लिए मितव्ययिता संबंधी उपायों की घोषणा की है। पाकिस्तान ने ईंधन के इस्तेमाल और अधिकारियों की

0: Houses of Parliament on the 12th of August gave their nod to referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to a joint parliamentary committee for further scrutiny. The bill seeks to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010 with the objective of making the use of foreign contributions more transparent and accountable. India has voted for a United Nations General Assembly resolution to allow Palestine President Mahmoud Abbas to address the high-level meeting of the Assembly in New York in the U.S. next week via video. Earlier, the U.S. refused to give him a visa to come to New York. The resolution was passed overwhelmingly yesterday with 152 votes, while only the U.S., Israel and Paraguay voted against it. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in the afternoon session today. The Sensex rose 233 points to 74,547, while the Nifty added 66 points to 23,336 when reports last came in. Double Olympic medalist Manu Bhakar and defending Asian Games shot put champion Tajinder Pal Singh Toor have been named India's flag bearers for the opening ceremony of the Asian Games. The opening ceremony is scheduled to take place tomorrow. And with that, we end this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीन वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर.
2: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू. दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन. वेटर ने फेंका स्पिन. 4,000 का आया बिल. रोहन का धड़का जोर से दिल. वो अपना वॉलेट गया था भूल. रिया ने किया डिजिटल पेमेंट. बन गई कूल. आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट. डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट.
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान.
4: हर लेन देन अब है आसान.
1: नमस्कार श्रोताओं, इस वक्त घड़ी हमारी इशारा कर रही है. वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 और ये हुए पूरे 55 सेकंड. स्वागत है आप सभी का. और आज का ये जो कार्यक्रम है वो है क्या, जी हाँ, एक ही फिल्म से. और इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं रहूँगी आपकी रेडियो हम सफ़र सोनाली. नमस्कार श्रोताओं, देखिए कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद कहानी याद रहती है, और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका पूरा सफ़र याद रह जाता है. आज की फिल्म ऐसी ही है. और बस वो कौन सी है ये, इस गाने को अगर मैं आपके सामने रखूंगी तब बखूबी पहचान जाएंगे कि मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ. और ये जो फिल्म है इससे जुड़ी आपकी जो भी यादें हैं वो आप हमारे साथ यहाँ पर ज़रूर बांटेंगे. तो हम शुरू करते हैं आज का ये सफ़र जो है इस फिल्म के साथ.

तो बस इस कहानी को सुनकर कौन नहीं पहचान पाएगा कि हमारी आज की फिल्म कौन सी है। जी हाँ, हमारी आज की फिल्म है 3 मार्च 1972 को रिलीज हुई बॉम्बे टू गोवा, और बॉम्बे से गोवा का सफर। बस में बैठे अलग अलग मिजाज के लोग, थोड़ा प्यार, थोड़ा डर, खूब सारी मस्ती और रास्ते भर होने वाला हंगामा। और हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, इसी फिल्म की। तो उसमें इस फिल्म में ये सारी बातें थी। तो अगर हम बात करते हैं निर्देशन की इस फिल्म के, तो ये निर्देशन किया था इस फिल्म का एस रामानाथन ने, और फिल्म के निर्माता थे महमूद और एनसी सिप्पी। कहानी उस समय की है, एक तमिल फिल्म बनी थी उस समय, मद्रास टू पौंडिचेरी, उससे ली गई थी इसकी फिल्म की कहानी। और फिल्म का जो संगीत है वो दिया था आरी बर्मन ने, और गीत किसने लिखे थे, राजेंद्र कृष्ण जी ने। तो फिल्म की सबसे बड़ी खासियत थी इसका सफर। तो मैंने आपको बताया ना, ये सफर आज हम अपने इस आधे घंटे में तय करेंगे, जिसमें से हमारे पास थोड़ा सा और कम वक्त रह गया है। तो ये सफर आप तय करेंगे आपकी रेडियो हम सफर सोनाली के साथ। तो अब हम आगे और बढ़ते हैं। तो अगर इस फिल्म की बात करूं, तो यहाँ पर ये है कि इस फिल्म की खासियत की मंजिल है गोवा, मतलब बॉम्बे से गोवा जा रही है एक बस, और उसके अंदर ये सारे सारे जो भी बातें हो रही हैं, जो भी गाने हो रहे हैं, जो भी कहानी है, वो सब चलती है इसी सफर के दौरान। फिल्म की कहानी शुरू होती है माला से, जिसका किरदार अरुणा ईरानी ने निभाया है। और माला को फिल्म में काम करने का सपना दिख रही है, उसे शौक है और उसे लगता है कि उसका सपना अब पूरा हो सकता है। लेकिन इसी चक्कर में वो ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाती है जो उसके भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं। अब देखिए, माला के साथ में इस सफर में कौन है उनका हीरो, उसके बारे में तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपसे भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी। आप अपनी जो भी बातें इस फिल्म से जुड़ी हैं हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। हम आगे बढ़े उसके पहले सुनते हैं बॉम्बे टू गोवा का एक और प्यारा सा गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रही थी बॉम्बे टू गोवा फिल्म का ये गाना। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इस फिल्म की कहानी की, जो बहुत जल्दी से आपको बता देती हूँ। तो हमने जैसे आपको बताया कि माला को फिल्म में काम करने का शौक़ है, लेकिन गलती से वो एक खून देख लेती है और वो भागती है वहाँ से। अब क्या होता है कि वो माला किसी तरह बचकर गोवा जाने वाली बस में बैठ जाती है और यहीं से शुरू होता है फिल्म का असली सफ़र। इसी बस में उसकी मुलाकात होती है रवि से, जी हाँ हमारे अपने अमिताभ बच्चन से। तो रवि उसकी मदद करता है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता भी बनता है। अब देखिए रिश्ता बनता है और इस रिश्ते की शुरुआत ऑलरेडी कहीं से हो चुकी है, जी हाँ उनके परिवार की तरफ से हो चुकी है। उस बारे में हम आपको क्या ही बताएंगे, आपसे बेहतर तो इस कहानी को कोई जानता भी नहीं होगा। फिर भी बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा और इस कहानी को आगे लेके चलती हूँ। देखिए माला का जो पीछा करने वाला है वो है शर्मा, यानी शत्रुघ्न सिन्हा। इतनी आसानी से वो उनका पीछा नहीं छोड़ता है और बस आगे बढ़ती जाती है और कहानी भी आगे बढ़ती जाती है। लेकिन इस फिल्म में सिर्फ रवि और माला की कहानी नहीं है, ये जो है ना, ये जो फिल्म है इसका असली मजा है उस बस में बैठे बाकी यात्री। जी हाँ, कोई अपनी भाषा और अंदाज के साथ है तो कोई अपनी अजीब अजीब आदतों के साथ है, कोई अपनी ही दुनिया में मस्त है। और इन सब के बीच है बस के कंडक्टर खन्ना, जी हाँ हमारे महमूद साहब। और महमूद की कॉमेडी इस फिल्म की जान है और उनका अंदाज ऐसा है कि कहानी में जब भी तनाव बढ़ता है हंसी के लिए कोई ना कोई मौका निकल ही आता है। और बस के ड्राइवर जो राजेश का किरदार है वो अनवर अली ने निभाया है, जो महमूद के भाई हैं। और इनके अलावा फिल्म में नज़ीर हुसैन, ललिता पवार, मुकरी मनोरमा, आगा केशव मुखर्जी और कई जाने माने कलाकार भी नजर आते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं बस और उसमें बैठे इतने सारे कलाकारों की, तो फिर ये गाना तो बनता ही है इस फिल्म का। आइए सुनते हैं बॉम्बे टू गोवा का ये एक और गाना।

जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म बॉम्बे टू गोवा की और हमारे साथ आप सब जुड़ गए हैं। तो हमारे साथ कौन जुड़ा है? देखिए, हमारे साथ जुड़े हैं अजीत भाव सर जी और अपने चिर परिचित अंदाज में इन्होंने सारी डिटेल्स हमारे साथ यहाँ पर साझा की है। और देखिए, वही सब बताया है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मद्रास टू पांडिचेरी का रीमेक है और 1972 में रिलीज फिल्म है। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं सुदर्शन मुखी जी, जो बिल्कुल समझ गए हैं कि ये फिल्म है बॉम्बे टू गोवा। फिर हमारे संग हैं डी बी राणा जी, नेहरू विहार दिल्ली से, और वो भी जान चुके हैं फिल्म कौन सी है। हमारे साथ जुड़े हैं मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, सौ जगुताई राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित, प्रथमेश, सर्वद, हर्षिता, सानवी और प्रणाली देशमुख, समस्त राजे जाधव देशमुख परिवार। और शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ये हमारे साथ पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा गुप्ता और है क्षिप्रा गुप्ता। फिर है हमारे साथ वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। हमारे साथ हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। और हमारे साथ हैं गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से हैं अशोक कुमार सहगल। और देखिए हमारे साथ हैं उन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, ये कौन है? आदर्श नगर मलौत पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा। शुक्रिया। अब देखिए हमारे साथ आप लोग बने रहते हैं, अच्छा लगता है। और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, शुक्रिया। आप सभी को एक चीज़ और भी बताऊंगी, बने रहिएगा, दोपहर 3 बजे भी आपके लिए लेकर आऊंगी बहुत गोल्डन एरा की कुछ अच्छी गज़लें, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, फिल्म बॉम्बे टू गोवा की। आपकी आगे की और भी मेल्स शुमार करूँगी, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और गीत।

आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गाना, और हम बात कर रहे हैं अब रवि की। रवि मतलब हमारे अमिताभ बच्चन, और ये उनकी शुरुआत की फिल्म थी। जी हाँ, और आपको एक चीज़ बताएं, उनकी दमदार आवाज़, गंभीर किरदार और अलग अंदाज के लिए हम उन्हें जानते हैं, लेकिन बॉम्बे टू गोवा के समय अमिताभ अपने करियर की शुरुआत में थे, और यह वो दौर था जब उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए लगातार काम करना पड़ रहा था, और इस फिल्म में उनका अंदाज आज के अमिताभ से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। ये हल्के फुल्के अंदाज में इसमें नज़र आते हैं, जिसमें रोमांस भी है, कॉमेडी भी है और एक्शन भी है। महमूद का अमिताभ पर भरोसा भी इस फिल्म के लिए जुड़ी बहुत सी बातों में से एक है। देखिए दोस्तों, इसमें हमने एक चीज़ देखा है कि महमूद ने उन्हें फिल्म में मुख्य भूमिका दी, और इस फिल्म में अमिताभ को लेकर फिल्म इंडस्ट्री को बहुत भरोसा नहीं था कि हाँ इन्हें एक हीरो का रोल दिया जा सकता है, लेकिन महमूद ने उन पर पूरा भरोसा दिखाया। और आज हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये बहुत बहुत दिलचस्प बात लगती है कि जिस कलाकार को आगे चलकर हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा नाम बनना था, वो इस फिल्म में अपने सफ़र की शुरुआत कर रहा था। और बस आपको इस फिल्म का एक ऐसा गाना मैं सुनाने जा रही हूँ जो ना उषा उत्थुप की आवाज़ में है, और बहुत अलग अंदाज, अलग मिजाज का गाना है, और आपने ये गाना ज़रूर बहुत कम सुना होगा। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं फिल्म बॉम्बे टू गोवा की, तो इसके जब सारे गाने आपको सुना रहे हैं तो ये गाना भी आपको हम ज़रूर सुनाएंगे। तो आइए सुनते हैं बहुत अलग अंदाज का गाना।

तो आप सुन रहे हैं उषा उत्थुप को, और इसके साथ हम सुन लेते हैं हमारे कुछ दोस्तों को भी हमें क्या बोलने जा रहे हैं। हमारे साथ संदीप मक्कड़ हैं, ज्योति मक्कड़, भन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गोरैया जालंधर से हमारे साथ जुड़े हैं। फिर हमारे साथ जग्गा राम साहू हैं, इनके साथ हैं ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं। इनके साथ हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बीबी, आराध्या साहू, और इन्हें अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, शुक्रिया। और फिर हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश वर्मा जी हैं, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा है, अन्नपूर्णा वर्मा है, ये हैं छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे साथ। फिर हैं देवशंकर तामरिया जी, और जीवन में एक पेड़ नहीं लगाया तो क्या किया, आज एक ही फिल्म में बॉम्बे टू गोवा, इस फिल्म में बस का जो ड्राइवर है वह महमूद का भाई है। बिल्कुल सही है आपने बताया, हमने भी आपको बताया, अनवर अली जी जो हैं वो महमूद के सगे रियल भाई हैं। और तो ये हमें लिख रहे हैं कौन, कबीर रेडियो श्रोता संघ, डोंडी लोहारा, बालौद छत्तीसगढ़। और यहाँ से हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, और हमारे साथ हैं डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया, और मास्टर अल कबीर, शुक्रिया शुक्रिया। फिर हमारे संग है धर्मेंद्र शिका जी, शुक्रिया, आपका मैसेज आ गया हमारे पास, इंतज़ार तो रहता ही है। तो आपने भी पूरी चीज़ें हमें बताई हैं इस फिल्म के बारे में, और शुक्रिया आपको उषा उत्थुप का गाना अच्छा लगा, सुन करके हमें अच्छा लगा। आपके साथ हैं कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार, आप सब हैं हमारे साथ भोपाल के राजस्थान से। फिर है देखिए संजय ढींगिया, नया नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, बागपत, उत्तर प्रदेश से। फिर हमारे साथ हैं जी हाँ डीबी राणा जी, मैंने उषा उत्थुप जी का गाना ही आपको सुना रही हूँ। फिर हमारे साथ हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर, शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। देखिए अब हम इस फिल्म के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां हम आपको बस आखिरी का गाना सुना सकते हैं। तो अब देखिए इस फिल्म की जो यात्रा है ना, वो हमें एक पुराने दौर पर लेके जाती है, जिसमें अगर हम आज भी बात करते हैं तो हमें महमूद याद आते हैं, बॉम्बे टू गोवा की अगर हम बात करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं अमिताभ की तो उनकी शुरुआती दौर याद आता है। फिर सबसे बढ़कर याद आती है वो बस जिसमें ये सफ़र हुआ था। तो रास्ते में इस पूरे सफ़र में हमें मिले अमिताभ बच्चन के जो रवि कुमार हैं, अरुणा ईरानी की माला से हमारी मुलाकात हुई, शत्रुघ्न सिन्हा शर्मा के रूप में हमारे साथ रहे, और खन्ना के रूप में महमूद हमारे साथ रहे। हमारे साथ कौन मिले, जी हाँ इस सफ़र में मिले आर डी बर्मन अपने गीतों के साथ, राजेंद्र कृष्ण अपने बोलों के साथ, अपने संगीत के साथ आर डी बर्मन, और अपने बोलों के साथ राजेंद्र कृष्ण। और हमारे साथ बहुत से किरदार ऐसे भी रहे जिन्होंने बकायदा अपना साथ हमारा निभाया। और इसीलिए कहते हैं कि कुछ सफ़र इसलिए याद रह जाते हैं क्योंकि रास्ते में ज़िंदगी थोड़ी और खूबसूरत, थोड़ी और मज़ेदार लगती है। तो बस चलते चलते आपको इस फिल्म का एक और गाना सुनाने जा रही हूँ, और इस गाने के साथ ही इस फिल्म का सफ़र यहीं पर ख़त्म भी होता है।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के साथ आप ये गाना सुन रहे हैं उनकी आवाज़ में। देखिए, आपको इस सफ़र में लेकर चली थी मैं, जी हाँ, बॉम्बे टू गोवा के सफ़र में आपके साथ थी मैं, आपकी रेडियो हम सफ़र सोनाली। तो अब बस मुझे दीजिए अनुमति, आपसे दोपहर 3 बजे फिर मिलूंगी मैटिनी मेलोडी के साथ।

0: रहा हूँ।
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ूं?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।
1: नो
2: हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रही हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पंजाबी में समाचार।

0: over the Andaman and Nicobar Islands, Keralam, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. Both countries review bilateral cooperation and issues of mutual importance. Hindustan Aeronautics Limited to hand over LCA Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force in the presence of Defence Minister Rajnath Singh in Bengaluru today. Railways approve 493 crore rupee project for construction of new rail line between Mukundwan and Gadchandur in Maharashtra. Security forces killed two Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur district of Jammu and Kashmir. Global ratings agency Moody's raises India's real GDP growth to 7% for current financial year. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को एलसीए तेजस और एचटीटी-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों को मार गिराया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की और जापान में एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। एक रिपोर्ट।
2: श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मोंगार में 65 बिस्तरों वाला ग्यालसुएन जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, समद्रुप जोंखार त्राशीगांग राजमार्ग पर जगन्नाथ पुल और भूटान के बुमथांग स्थित राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र को भारत से 43 जर्सी गायों को दिया जाना शामिल है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। बैठक में दोनों पक्षों ने मार्च 2024 में हुए ऊर्जा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग में हाल की प्रगति का उल्लेख भी किया। भूटान की पनबिजली परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया गया और कहा कि इससे दोनों देशों के मौजूदा ऊर्जा सहयोग को और गति मिली है। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि पिछले कई दशकों में सेमीकंडक्टर चिप एक छिपे हुए औद्योगिक घटक से आगे बढ़कर आर्थिक क्षमता, तकनीकी परिपक्वता और राष्ट्रीय क्षमता का मापदंड बन गई है। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वो कितना ही विकसित क्यों न हो, अकेले चिप का निर्माण नहीं कर सकता। श्री मिश्री ने कहा कि ताइवान दुनिया की करीब 90% सबसे उन्नत चिप का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए डिजाइन, सॉफ्टवेयर, उपकरण और सामग्री दूसरे देशों से आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू एफओसी ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एचटीटी-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। एच-80 फोर्टी विमान आधुनिक

0: कॉकपिट से लैस है। ड्रोन नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेश निर्मित असैन्य हेलीकॉप्टर है जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक रिपोर्ट।
1: फुल ऑपरेशन क्लीयरेंस प्राप्त LCA तेजस HTT-40 विमान चालक प्रशिक्षण विमान और ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर का डिफेंस और नागरिक विमानयान क्षेत्र में शामिल होना एक अहम उपलब्धि है। इससे भारत मिलिट्री और सिविल पायलट्स के प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। देश में ही विमान निर्माण से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आवश्यक नव उद्योग बढ़ेंगे। विदेशी विमानों के आयात की निर्भरता घटेगी जिससे विदेशी मुद्रा की बचत भी हो पाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए X@AIR News हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि नई रेल लाइन एक छोटा और बेहतर रेल मार्ग उपलब्ध कराएगी। इससे यात्रा की दूरी, परिवहन समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। ये रेल लाइन मौजूदा वर्धा मानिकगढ़ रेलखंड पर भीड़ कम करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराएगी। इससे मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुचारू हो सकेगा। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रगति मंच से सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने सक्रिय शासन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के बारे में बताया। राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख में वृद्धि हुई है। ये विशेष साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर 100.1 MHz पर सुना जा सकता है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
3: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष की सार्वजनिक सेवा को समर्पित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत एक नई और दूरदर्शी पहल सेवा प्रथम नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। महेंद्रगढ़ में पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंच राज्य के छात्रों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, जमीनी स्तर के इनोवेटर्स और आम नागरिकों को अपने नवीनतम विचारों, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों तथा समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं।

0: सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान ने झारखंड के सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। राज्य के 91% से अधिक गांवों को ODF प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जहां अब ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष काम हो रहा है। स्वच्छता को हर नागरिक के स्वभाव और संस्कार में शामिल करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
2: साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए।
1: प्रधानमंत्री के इसी विजन की वजह से आज झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लगभग 42 लाख शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही राज्य के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में गोवर्धन योजना के तहत कचरे से कंचन और बायोगैस बनाने की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन का सीधा लाभ पाने वाली रांची की ग्रामीण महिलाओं ने इलाके में आए इस बड़े बदलाव पर अपनी खुशी साझा की।
3: मेरा नाम निरुपमा तिग्गा है, मैं नगड़ी प्रखंड के सपारुम गांव की रहने वाली हूं। ये जो योजना है स्वच्छ मिशन भारत का, प्रधानमंत्री हमारे स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय गाँव में दिए वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं।
4: हमारे सपारुम पंचायत के सपारुम गाँव में 540 के लगभग शौचालय बने हैं। पहले तो इस गांव में बहुत शौचालय नहीं रहने के कारण बहुत परेशानियां, बहुत बीमारियां होती थी, परंतु अभी जब से शौचालय मिला है सभी को सुविधा होती है।
1: झारखंड में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस साल 5000 से अधिक स्वच्छता लक्षित इकाइयों और कचरा संवेदनशील स्थानों की युद्ध स्तर पर सफाई की गई है। स्वच्छता की इस नई चेतना ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि स्वच्छता से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए विकसित भारत 2047 की नींव को और मजबूत किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कर्मवीर के साथ मैं महविश रहमान।
0: भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस मामले में चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश को सामान्य प्रक्रिया बताया है। इस आदेश में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के दौरान पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन होने पर उसके चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी जाती है। श्री राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में श्री त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में अतीत में कई विभाजन हुए हैं और इसका चुनाव चिन्ह भी कई बार बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने आज पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू की। पार्टी का नारा है नशा मुकाना सारा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो और अन्य नेताओं ने माधोपुर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक GDP वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। एजेंसी ने आशा व्यक्त की कि भारत सभी अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रखेगा। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 176 अंक बढ़कर 74,491 और निफ्टी 40 अंक बढ़कर 23,318 पर कारोबार कर रहा था। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेगबॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने

0: महिला सिंगल्स स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेकबॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसूजा ने जापान की योइना साकामोतो को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को एलसी तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटवन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं, कार्यक्रम एक कलाकार में आप सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत है। आज बात उस महान अदाकारा की जिनकी आंखों में गहराई और आवाज में एक ऐसा एहसास जो आपके दिल को छू जाता है। इस गीत से आप समझ गए होंगे आज हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी की।

श्रोताओं, आज एक ही कलाकार कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं शबाना आजमी जी की। 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में जन्मी शबाना जी को कला, साहित्य और संवेदनशीलता विरासत में मिली। इनके पिता मशहूर शायर कैफी आजमी थे और माँ रंगमंच की जानी मानी अभिनेत्री शौकत आजमी। घर के साहित्यिक मॉल और FTII पुणे से मिले अभिनय के प्रशिक्षण ने इन्हें बहुत ज्यादा निखारा। शबाना जी ने 1974 में फिल्म अंकुर से अपने फिल्मी सफर का आगाज किया। पहली फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। अपनी दमदार मौजूदगी इन्होंने फिल्मी दुनिया में बनाई। इसके बाद समानांतर सिनेमा में उनके अभिनय का स्वर्णिम दौर शुरू हुआ। फिल्म स्वामी में उनके सादगी भरे अंदाज को अभी आपने सुना। इसके अलावा गंभीर और आर्ट फिल्मों तक वो सीमित नहीं रहीं। शबाना जी ने व्यावसायिक सिनेमा में भी कदम रखा और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। फिल्म अमर अकबर एंथनी का यह नगमा उनके चुलबुले और रोमानी अंदाज को बयां करता है।

हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज जिक्र हो रहा है मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी का। श्रोताओं, शबाना जी ने व्यावसायिक और समानांतर सिनेमा के बीच संतुलन बनाते हुए अपने अभिनय का दायरा हमेशा बढ़ाया। निर्देशक शेखर कपूर की फिल्म मासूम में एक स्वाभिमानी पत्नी और मां के रूप में उनका अभिनय भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन मिसालों में से एक है।

श्रोताओं, शबाना जी के जीवन का सबसे खूबसूरत पहलू ये भी रहा है कि वह संवादों से ज्यादा अपनी आंखों से अभिनय करती। उनकी आंखों से जो अभिनय होता वो लोगों के दिल को छू जाता। महेश भट्ट की फिल्म अर्थ में एक टूटे रिश्ते और स्त्री के आत्मसम्मान की कहानी को जगजीत सिंह की आवाज में रचा ये गीत बखूबी उकेरता है।

श्रोताओं, फिल्मों के अलावा शबाना आजमी सामाजिक मुद्दों, महिला अधिकारों और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए हमेशा मुखर रही हैं। जीवन के इसी संघर्ष और संवेदनशीलता को फिल्म बाजार की ये गजल बड़ी खूबसूरती से छूती है।

श्रोताओं, इन गीतों को सुनकर शबाना जी के अभिनय के वो रूप हमें देखने और सुनने को मिलते हैं जो हमें बहुत अच्छा महसूस कराते हैं। शबाना जी ने अपने जीवन में हमेशा नए प्रयोग किए, कभी लीक पर चलने से नहीं झिझकी। मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर से इनसे इनका विवाह इनके जीवन का एक खूबसूरत मोड़ साबित हुआ। समय बीत गया लेकिन शबाना आजमी के अभिनय की चमक कभी धुंधली नहीं हुई। 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों और पद्म भूषण से सम्मानित शबाना जी आज भी सिनेमा में उतनी ही सक्रिय हैं। अपने बेमिसाल अभिनय, समाज सेवा और अदम्य जज्बे से भारतीय सिनेमा को समृद्ध करने वाली मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी जी की ये खूबसूरत जीवन यात्रा यूं ही आगे बढ़ती रहे, यही हमारी दुआ है। श्रोताओं, चलते चलते फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का एक गीत आपको सुनवाते हैं जो उनके अभिनय और जिंदगी के दौर को बयां करती है।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक एक कलाकार अब संपन्न होता है। आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें ईमेल करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज।
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज। और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ, आपकी रेडियो हम सफर सोनाली।

जी हाँ दोस्तों, कुछ आवाज़ें कानों तक नहीं आती, सीधे दिल तक पहुंचती हैं, और कुछ बात हो और गीत संगीत की बात हो तो कुछ गज़लें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सिर्फ सुनते नहीं, उनके साथ थोड़ा सा जी लेते हैं। कभी किसी शाम की तन्हाई में, कभी किसी अधूरी मोहब्बत की याद में, कभी किसी ऐसी शख्स की याद में जो अब हमारे साथ नहीं है, ऐसे में बस गज़ल हमारे पास चुपचाप आ बैठती है। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में बनी फिल्मी गज़लों की अपनी ही एक दुनिया है। शब्दों में शायरी, धुनों में ठहराव और आवाज़ों में ऐसा जादू कि गीत खत्म हो जाने के बाद भी उसका एहसास देर तक हमारे साथ बना रहता है। तो आइए लौटते हैं उन्हीं किसी सफ़र में, उसी किसी दुनिया में जिसका नाम है गज़ल। और आप सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम की पहली गज़ल फिल्म मिर्ज़ा गालिब, और स्वर है तलत महमूद के साथ सुरैया की।

जी हाँ, मिर्ज़ा गालिब के साथ हमने शुरुआत की हमारी आज की मैटनी मेलोडी इस कार्यक्रम की, और ये बहुत बेहद ही पुरखलुस और बहुत ज़्यादा आज भी दिल को झंझोड़ने वाली, झकझोरने वाली और किन्हीं ऐसे तारों को छेड़ने वाली गज़ल है ये वाली मिर्ज़ा गालिब की, जिसे हमने सुना तलत महमूद और सरैया की आवाज़ में। अब हम जो दूसरी गज़ल आपके लिए लेकर आए हैं उसको सुनाने के पहले आपको बस इतना कहूंगी कि कभी किसी अपने का साथ इतना प्यारा होता है कि वक्त का पता ही नहीं चलता, और जब वो साथ बस 2 घड़ी का हो तो वही 2 घड़ी पूरी उम्र की याद बन जाती है। लता मंगेशकर की आवाज़ में और उनके साथ है मोहम्मद रफ़ी। आइए सुनते हैं इस बेहद खूबसूरत गज़ल को, फिल्म है गेटवे ऑफ इंडिया।

फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया की गजल आप ये सुन रहे थे, जिसे स्वरबद्ध किया था मदन मोहन और लिखा था, जी हाँ, राजेंद्र कृष्ण ने। अगर हम बात करते हैं तो राजेंद्र कृष्ण जी ने बहुत खूबसूरत गजलें फिल्मी दुनिया को दी हैं, और अब मैं उनकी एक और गजल आपके साथ में यहाँ पर साझा कर रही हूँ, जिसे हमने लिया है फिल्म जहाँ आरा से, और है ये जो आवाज़। आवाज़ वो एक ऐसे इंसान की जिसकी आवाज़ एक लरसता हुआ सा कोई खजाना लगती है, लरसता हुआ सा कोई ऐसा अफसाना लगती है, जिसको जैसे पानी के ऊपर आप हवा में, जब पानी पर हवा चलती है तो जिस तरह से हलचल होती है, वैसे ही ये आवाज़ ऐसी है, जब आप सुनते हैं तो लगता है एक अलग सी हलचल इस आवाज़ में है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तलत महमूद की। तो आइए सुनते हैं फिल्म जहां आरा की ये गजल, जिसे एक बार फिर लिखा है राजेंद्र कृष्ण जी ने।

जहां आरा में आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में इस गजल को। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुनहरे दौर की उन गजलों की जो आज भी हमारे दिल को कहीं ना कहीं धड़काती हैं और अभी भी एक हसीन सा कोई तार छेड़ जाती हैं जो देर तक हमारे जहन में, हमारे दिल में जंकृत होता रहता है। बहुत बार ये होता है दोस्तों कि प्यार में, मोहब्बत में बहुत सी शिकायतें होती हैं, बहुत सी शिकवे होते हैं, लेकिन हम चाह कर भी उन बातों को बोलते नहीं हैं। बहुत बार सिर्फ अपनी बातों से या अपनी अंदाज से या अपनी बोलों के ज़रिए या अपनी आँखों के ज़रिए उन चीज़ों को हम बोलना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमारे दिल में महफूज रहती हैं। बहुत सी शिकायतें हमें ज़िंदगी भर ऐसी तड़प दे जाती हैं जो हम बोल करके बयान नहीं कर सकते। तो अब मैटिनी मेलोडी में आपके लिए फिर एक ऐसी गजल लेकर आई हूँ जो है फिल्म अदालत की, और इसे एक बार फिर लिखा है राजेंद्र कृष्ण जी ने और संगीत दिया है, जी हाँ, मदन मोहन ने। तो आइए सुनते हैं ये गजल।

फिल्म अदालत की ये गज़ल आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। और इस गज़ल में आपको अगर याद हो तो नरगिस की आपको याद आएगी, जिस गज़ल में हमारे सामने पर्दे पर नज़र आती हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ यादें हमें बहुत तकलीफ़ दे जाती हैं। रोज़ याद नहीं आती वो चीज़ें, लेकिन फिर भी जब भी आती हैं तो मन को और आँखों को पूरी तरह से नम कर जाती हैं। बीते हुए लम्हों की ऐसी ही एक भीगी याद को लेकर हम आपके साथ यहाँ पर आए हैं और आपको सुनाते हैं एक ऐसी गज़ल जिसे लिखा है काफ़ी आज़मी साहब ने, और फिल्म है हंसते जख्म। तो आइए सुनते हैं लता जी की आवाज़ में ये गीत, ये गज़ल, माफ़ कीजिएगा।

दोस्तों, आप सुन रहे थे फिल्म हंसते जख्म से, ये गज़ल जिसे कैफ़ी आसमी साहब ने लिखा था। अब मैं आपको एक ऐसी गज़ल सुनाने जा रही हूँ जिसका गायक स्वर है सुरेश वाडकर का। फिल्म है गमन, 1978 में रिलीज़ हुई ये फिल्म, और इसको जो लिखा है, इस गज़ल को लिखा है शहरयार ने। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गज़ल।

दोस्तों, हमने इस महफिल में कुछ पुरानी गजलों को छुआ, कुछ भुली हुई आवाज़ों को फिर से महसूस किया और शायद अपने भीतर छुपी कुछ पुरानी यादों को भी छुआ। शायद इसीलिए पुरानी फिल्मी गजलें आज भी पुरानी नहीं लगती, वे हर बार सुनने पर हमारे किसी नए एहसास से मिल जाती हैं। तो बस जाते जाते इतना कि कुछ नगमे उम्र के साथ पुराने नहीं होते, बस हमारे दिल के और करीब होते जाते हैं।

दोस्तों आप सुन रही हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में गुलजार का लिखा ये एक जो गज़ल है और इसे हमने लिया है फिल्म मौसम से। इस गज़ल के साथ ही मुझे यानी आपके रेडियो हमसफ़र सोनाली को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, दोपहर के 3:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

अमीन मीर तकी मीर का शेर है, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। खुदाए सुखन मीर तकी मीर उर्दू के बड़े शायर हैं, जिनको शहंशाह गज़ल भी कहा जाता है। उनकी अज़मत का एतराफ़ कई शायरों ने किया है। मिर्ज़ा गालिब फरमाते हैं, रेख ताके तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेख ताके तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने भी कहा है, ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज नसीब, ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत जोर गज़ल में मारा। समीन मीर तकी मीर एक आफाकी शायर हैं। उनका असल नाम मोहम्मद तकी था। उनकी पैदाइश आगरा में हुई और उनका इंतकाल 20 सितंबर सन 1810 में लखनऊ में हुआ। उन्होंने उर्दू शायरी को दर्द व असर और सोज़ो गुदास से मालामाल किया है। उनके फ़न में गनाइत, मौसीकियत और तरन्नुम है। हमारे आगे तेरा जब किसू ने नाम लिया, हमारे आगे तेरा जब किसू ने नाम लिया, दिले सितमजदा को हमने थाम थाम लिया। उल्टी हो गईं सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, उल्टी हो गईं सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। आइए सामीन, बेगम अख्तर की आवाज़ में गज़ल सुनते हैं। कलाम है मीर तकी मीर का।

सामीन, अभी आप इंदु प्रकाश की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था मीर तकी मीर का। सामीन, मीर तकी मीर की शायरी में मजाजी मोहब्बत के साथ साथ हकीकी मोहब्बत के जलवे भी नज़र आते हैं। तसव्वुफ़ का बयान उनकी शायरी में मिलता है। उनकी तबीयत में सब्र, रज़ा, दर्दमंदी, खुददारी, गमों से निभाने की सलाहियत और कनात है। इश्क के साथ नाकामियाँ और महरूमियाँ हमेशा वाबस्ता रही हैं। इश्क ही इश्क है जहाँ देखो, इश्क ही इश्क है जहाँ देखो, सारे आलम में फिर रहा है इश्क। दिल की बात कही नहीं जाती, चुपके रहना ठाना है। दिल की बात कही नहीं जाती, चुपके रहना ठाना है। हाल अगर है ऐसा तो जी से जाना जाना है। आइए सामीन, शांति हिरानंद की आवाज़ में गज़ल सुनते हैं। कलाम है मीर तकी मीर का।

सामिन, अभी आप शांति हीरानंद की आवाज में गजल सुन रहे थे। कलाम था मीर तकी मीर का। सामिन, मीर तकी मीर अपने ख्यालात को बेहतरीन अंदाज में पेश करने का हुनर खूब जानते थे। उनकी शायरी में जो चीज हमें सबसे ज्यादा मुतासिर करती है वो उनके जज्बे की सदाकत और सादगी है। एक आला शायर जिंदगी की हकीकतों पर गौर करता है, शेर में पेश करने से पहले जज्बा और एहसास को शक्ल देता है। मीर ने ये फर्ज खूबसूरती से अदा किया है कि उनके अशार खुद ब खुद दिल में उतर जाते हैं और असर पैदा करते हैं। बेखुदी ले गई कहाँ हमको, बेखुदी ले गई कहाँ हमको, देर से इंतजार है अपना, महर की तुझसे तवक्को थी तू सितमगर निकला, महर की तुझसे तवक्को थी तू सितमगर निकला, मोम समझते थे तेरे दिल को सो पत्थर निकला। आइए सामईन, सतपाल सिंह की आवाज में गजल सुनते हैं। कलाम है मीर तकी मीर का।

सामीन, अभी आप सतपाल सिंह की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था मीर तकी मीर का। सामीन, इसमें कोई शक नहीं कि मीर तकी मीर अपने ज़माने से लेकर इस ज़माने तक उर्दू दुनिया की गज़ल पर छाए हुए हैं। यही उनकी अजमत का सबूत है। बकौल वो खुद, सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, ताहश्र जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। सामीन, मीर तकी मीर आज भी अपनी तख्लीकात की वजह से सबके दिलों में जिंदा जावेद है। तो सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम आबशारे गज़ल। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपनी मेज़बान नसरीन बेगम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

印度德里广播电台现在播送禅宗故事，题目是天堂与地狱。一位武士说，我想知道天堂。

他要将另一只海星让进了水中。印度德里广播电台，听众朋友们，你们听了一个暂时故事。

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता, हाजिर है लेकर एक बार फिर से खेल जगत से जुड़ी तमाम खेल गतिविधियां। और आज इस खेल कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी
2: संचित जैन।
1: संचित और मैं आपको रूबरू कराएंगे उन खेल गतिविधियों से इस वक्त जो पूरे वर्ल्ड के अराउंड खेली जा रही हैं, जिसमें सबसे पहले बात होगी एशियन गेम्स की, जहां पर हर एक खिलाड़ी हर एक कंट्री से अपने अपने खेल का प्रदर्शन करने के लिए जुझारू तरीके से मैदान में उतर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर चेस की, साथ ही साथ बात होगी शूटिंग की भी, और इसके साथ साथ आपको लेकर चलेंगे टेनिस के कोर्ट में भी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस वक्त चल रहे एशियन गेम्स में, जहां पे आज दूसरे दिन के खेल के अगर हम बात करें तो भारत के लिहाज से जो मुकाबले रहे उनका जो रिजल्ट है वो अच्छा है, क्योंकि भारत का जो आगाज है वो काफी शानदार तरीके से हुआ। अगर हम बात करें सबसे पहले दूसरे दिन में खेले गए मैचेस की इंडिया के लिहाज से, तो इंडिया की जो क्रिकेट टीम है महिलाओं की, उन्होंने मुकाबला खेला जापान के साथ, जहां एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपने अभियान का आगाज शानदार तरीके से जीत के साथ किया। भारत का पहला मैच जापान के साथ था। निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में हुए क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान के खिलाफ 8 विकेट की आसान जीत हासिल कर ली। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जापान की पारी सिर्फ 57 रनों पर ही सिमट गई। वहीं भारतीय टीम ने 5 ओवर में 2 विकेट खोकर इस आसान से लक्ष्य को

0: हासिल कर लिया। भारत ने टॉस जीता और जापान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जापान ने धीमी शुरुआत की, लेकिन पावर प्ले में उसने विकेट नहीं दिए। यहां लगा कि टीम कुछ अच्छा स्कोर खड़ा कर देगी, लेकिन 7वें ओवर में टीम के विकेट गिरने शुरू हुए और 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर उसका आखिरी विकेट गिर गया और टीम सिर्फ 57 रन ही बना पाई। भारत ने टारगेट 2 विकेट खोकर 5 ओवर में हासिल कर लिया। भारत को विकेट दिलाने की शुरुआत श्री चर्नी ने की। उन्होंने 7वें ओवर की 2री और 3री गेंद पर लगातार 2 विकेट लेकर विकेटों की शुरुआत की और फिर लगातार विकेट गिरते ही रहे। टीम की सिर्फ दो बल्लेबाज जो है वो दहाई के अंक में जा सके, जिसमें सबसे ज्यादा रन जो है 25 रन अयाका काटो स्टाफोर्ड ने बनाए। उनके सलामी जोड़दार हारूना 10 रन बना पाई। भारत की तरफ से श्री चर्नी ने 4 ओवर में 10 रन दिए और 2 ओवर मेडन करते हुए 4 विकेट लिए। उनके अलावा शेफाली वर्मा ने 2 सफलताएं अर्जित की। श्रेयंका पाटिल और दीप्ति शर्मा के हिस्से में 1-1 विकेट आए। 2 बल्लेबाज रन आउट हुए और इस तरीके से जो भारतीय महिला टीम है उनकी जो एक जीत है वो यहां सुनिश्चित हुई और एशियन गेम्स में भारत का जो एक सफर है वो मैं कहूंगी शुरुआत जीत के साथ हुई। और भी जीते हुई हैं आज के दिन में, तो क्या है वो खबर, चलते हैं संचित के पास।
1: जी बिल्कुल कविता, बात करते हैं टेक बॉल की, जो कि एशियन गेम्स में अपना डेब्यू कर रहा है एज अ गेम। उसमें खुशखबरी आई है, इंडिविजुअल इवेंट में क्विंसी डिसूजा भारत की सेमीफाइनल में पहुंच गई है ग्रुप टॉपर बन के। उन्होंने वर्ल्ड नंबर 7 युइना साकामोटो को हराया और अब सेमीफाइनल में एंट्री ले ली है। मिक्स इवेंट में क्विंसी डिसूजा और अनस अपना मैच क्वार्टर फाइनल में हार गए, लेकिन क्विंसी डिसूजा से बहुत उम्मीदें हैं कि वो आगे चल के एक पदक लेके आएंगी।
0: जी बिल्कुल, और मैं बता दूं क्विंसी का मुकाबला कल खेला जाएगा। यहीं अगर एशियन गेम्स पर ही आगे बात करें तो अभी इसकी औपचारिक शुरुआत नहीं हुई है। औपचारिक शुरुआत इसकी कल होनी है, जिसमें की जो पूरी ओपनिंग सेरेमनी है एक भव्य समारोह जो है वो होना है, जिसमें भारतीय शूटर मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। अब क्योंकि एशियन गेम्स पर बात चल रही है तो अभी लगातार हम आपको सुनवा रहे हैं एशियन गेम्स में खेलों की सीरीज, जिसमें आज हम बात करेंगे 3 ऐसे खेलों की जिसमें दम दिखाना होता है और साथ ही साथ एक खिलाड़ी को इंडिविजुअली पूरा धैर्य रखकर अपने ओपोनेंट को देखना होता है जीत के लिए। चलिए सुनते हैं विस्तृत रिपोर्ट। मैट हो या अखाड़ा, दाब हो या दम, पकड़ हो या पलटवार, एशियाई खेलों में कुछ मुकाबले सिर्फ स्कोर से नहीं जीते जाते, उनमें ताकत के साथ चाहिए धैर्य, तकनीक, संतुलन और आखिरी सेकंड तक लड़ने का जज्बा। जापान की आइची नागोया में होने जा रहे 20वें एशियाई खेलों में भारत की नजरें कई खेलों पर हैं और आज हमारी एशियन गेम सीरीज के एपिसोड 10 में हम उन 3 खेलों की बात करेंगे जहां खिलाड़ी अकेले अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश की उम्मीदों के साथ मैट पर उतरते हैं। आज बात होगी जूडो की पकड़ की, कुश्ती के दाव पेच की और कबड्डी की दमदार रेड की। सबसे पहले बात जूडो की। जूडो में जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, सही समय पर सही पकड़, शरीर का संतुलन और ओपोनेंट की चाल को समझना, यही इस खेल की असली ताकत है। और इस बार भारत की एशियन गेम्स जूडो टीम में 3 खिलाड़ी शामिल हैं। खास बात ये है कि ये तीनों ही महिला खिलाड़ी हैं। अस्मिता डे 48 kg, यामिनी मौर्य 57 kg और इनुनगान बी ताखे लंबम 70 किलोग्राम, जो इस बार एशियन गेम्स में भारत के मेडल के प्रबल दावेदार हैं। एशियन गेम्स के इतिहास में जूडो में भारत के प्रदर्शन पर अगर नजर डालें तो इस खेल में भारत का प्रदर्शन काफी सीमित और औसतन रहा है। भारत ने अब तक एशियन गेम्स 1986 से 2022 के इतिहास में कुल 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और पिछले 32 सालों से भारत इस खेल में एक भी मेडल नहीं जीत पाया है। एशियन गेम्स में जूडो को पहली बार 1986 में सियोल में शामिल किया गया था, जहां भारतीय टीम ने डेब्यू करते हुए 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सबको चौंका दिया था। वहां मेडल विजेता थे संदीप बयाला, कावास बिल्ली मोरिया, श्याम सिंह गुज्जर, बन्नू सिंह। इसके साथ एकमात्र महिला मेडल विजेता पूनम चोपड़ा रही थी, जिन्होंने 1994 के हिरोशिमा एशियन गेम्स में महिलाओं की 56 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वो एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला जूडो खिलाड़ी रही हैं। इसके बाद से भारत एशियन गेम्स में जूडो स्पर्धा में कोई पदक नहीं ला सका। ऐसे में हालिया प्रदर्शन में नई उम्मीद लेकर हमारी 3 महिला जुड़ोका, जिनमें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली अस्मिता डे हैं, जिनसे 32 साल के मेडल के सूखे को खत्म करने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं।

0: अस्मिता ने अपनी एशियन गेम्स की तैयारियों को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: अभी मैं ये माइंडसेट करके जा रही हूँ कि मुझे गोल्ड जीतना है फिर से देश के लिए, अपने देश के लिए एशियन गेम्स में भी, तो इसीलिए मैं अभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रही हूँ, ट्रेनिंग कर रही हूँ। सबका एक होप बन गया है कि मैं ज़रूर मेडल जीत के आऊँगी, या हमारे जितने भी मतलब इंडिया के जूडो के प्लेयर्स हैं वो सारे जीत के आएंगे। तो यही कहना चाहूँगी कि मैं भी कोशिश कर रही हूँ ट्रेनिंग करके, बाकी तो भगवान के ऊपर है, मैं ज़रूर लेके आऊँगी।
0: अस्मिता डे 30 सितंबर को मैट पर उतरेंगी, जबकि यामिनी मौर्य और इनुगान भी 1 अक्टूबर को मुकाबला करेंगी। चलिए अब बात करते हैं कुश्ती की, जहां मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं होता, यहां एक पहलवान को विरोधी की हर चाल को पढ़ना होता है, सही समय पर दाव लगाने होते हैं और आखिरी सेकंड तक अपना संतुलन बनाए रखना होता है। एशियन गेम्स में कुश्ती फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन दोनों कैटेगरीज में खेली जाती है। भारत का इस खेल से लंबा और शानदार इतिहास रहा है। 1962 के जकार्ता एशियन गेम्स में भारतीय पहलवानों ने 3 गोल्ड सहित 12 मेडल जीते थे, और पिछले एशियन गेम्स की बात करें तो भारत ने रेसलिंग में 6 मेडल, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते थे। अब बारी है आईची नागोया की। इस बार भारतीय महिला पहलवानों में बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें निशा धैया के लिए 2026 एशियन गेम्स एक खास पड़ाव है। उनके सामने 68 किलोग्राम वर्ग में खुद को साबित करने की चुनौती होगी। पिछले बड़े मुकाबलों के अनुभव और चोटों से मिली सीख के बाद इस बार उनका फोकस अपने प्रदर्शन को पूरी तरह एशियन गेम्स के मंच पर रखने का है। क्या कहती है निशा, आइए सुनते हैं।
2: एशियन गेम्स के लिए जैसे जापान में होने वाले हैं तो तैयारी काफी अच्छी चल रही है। आपको पता होगा कि हमारे जैपनीज कोच हैं जो हमारी तैयारी देख रहे हैं, और एक यूएसए से भी आए हैं बटलर सर, तो उनके साथ काफी अच्छा लग रहा है ट्रेनिंग करके, और काफी नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। उम्मीद कर सकते हैं मेरा पूरा फोकस एशियन गेम्स गोल्ड का ही है, ना उससे कम कुछ भी होगा।
0: मनीषा भानवाला के लिए एशियन गेम्स डेब्यू है। 62 किलोग्राम से 57 किलोग्राम वर्ग में आने के बाद उन्होंने अपनी ताकत और तकनीक पर नए सिरे से काम किया है। अब एशियन गेम्स में पहली बार उतरते हुए उनके सामने नई कैटेगरी में अपने प्रदर्शन को बड़े मंच तक ले जाने की चुनौती है।
3: ये मेरा फर्स्ट एशियन गेम्स है और मैं काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरा सपना है, मेरी फैमिली का सपना है, और हर खिलाड़ी का मेरे हिसाब से सपना होता है कि हम गेम्स खेले, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो ये इसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। तो ये वीरेंद्र जी सर मेरे साथ पिछले 5 साल से मैं इंडिया कैंप में हूँ सर के साथ, सीनियर कैंप में, तो सर को पता जैसे कि मैं कहाँ पे लॉस करती हूँ, कहाँ पे विन करती हूँ, तो मेरी टेक्निकों को लेके इनके माइंड में पहले ये है कि इसकी किस चीज़ पे ज़्यादा काम करवाना है, तो वो टीम पूरी टीम के साथ मिलके मेरे साथ जैसे मेरी कोई टेक्निक खराब है उसको ठीक कर रहे हैं, और मेरे स्टेमिना पे और स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली वेट चेंज किया है, तो मेरी स्ट्रेंथ पे भी काफ़ी ध्यान रख रहे हैं वो लोग, क्योंकि मेरा एक प्लस पॉइंट है मेरी स्ट्रेंथ।
0: रेसलिंग में एक और बड़ी उम्मीद महिलाओं में है अंतिम पंगाल। अंतिम पंगाल हांगजो एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। अब 53 किलोग्राम वर्ग में एक बार फिर एशियन गेम्स के मंच पर उतरते हुए उनके पास पिछले अनुभव को इस बार और बेहतर प्रदर्शन में बदलने का मौका है। उनके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल विनिंग एक्सपीरियंस है, और इस बार तैयारी में अटैक और काउंटर पर विशेष काम किया गया है। क्या कहती है अंतिम, आइए सुनते हैं।
4: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस बार मैं 53 केजी में सिलेक्ट हुई हूँ और अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। इस बार पहले से ज़्यादा पता है, मतलब पहले सीनियर लेवल पे वो बाउट नहीं लड़ी थी मैंने, अब इस बार बहुत बाउट भी लड़ी हैं, इसके 2 साल हो गए, बीच में 2-3 साल हो गए हैं, तो अभी ये है कि मैं उनकी बाउट देखी है, उनके साथ बाउट हुई भी है मेरी, तो अभी उनके ऊपर गलतियों के ऊपर काम करूँ, जो मेरी गलती है और अच्छे से बाउट।
0: भारतीय रेसलिंग टीम में एक्सपीरियंस और युवा प्रतिभा का मिक्स है। पिछली एशियन गेम्स में भारत ने रेसलिंग में 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। अब आईची नागोया में टीम उस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। कोच वीरेंद्र धैया ने भी टीम की तैयारियों को लेकर भरोसा जताया है।
5: महिला रेसलिंग से ज्यादा उम्मीदें हैं, नए और पुराने खिलाड़ियों का मिक्सर है, जैसे 50 किलो में एक 18 साल की बिल्कुल नई लड़की है दीपांशी है, और प्रिया मलिक भी नई है, बाकी मनीषा है, मानसी है, निशा दैया है ओलंपियन, तो दोनों का मिक्स है, तो बढ़िया उम्मीद है हमें जापान से, जापान में होप सो बढ़िया रिजल्ट रहेगा हमारा, पिछली बार से मच बेटर।
0: तो कुश्ती के मैट पर दाव, ताकत और तकनीक की इस जंग के साथ हमारी बात यही नहीं रुकती, भारतीय पहलवानों की मेहनत और अब तक के अनुभव ने एशियन गेम्स के लिए उम्मीदें जरूर बढ़ाई हैं, लेकिन खेल का रोमांच यहीं खत्म नहीं होता। अब बारी है उस खेल की, जहां एक रेड, एक टैकल और टीम का बेहतरीन तालमेल पूरे मुकाबले का रुख बदल सकता है। अब बात होगी कबड्डी की। भारत में सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक कबड्डी ने पिछले कुछ सालों में खेल प्रेमियों को कई रोमांचक पल दिए हैं। कबड्डी दर्शकों के लिए एक आकर्षण पैदा करने वाला शारीरिक शक्ति, चपलता और रणनीति का खेल है। कई सालों का पुराना इतिहास रखने वाले कबड्डी को बर्लिन 1936 ओलंपिक से पहले एक प्रदर्शनी खेल के रूप में प्रदर्शित किया गया था। इस खेल को जल्द ही एशिया में लोकप्रियता मिली, हालांकि चीन के बीजिंग में 1990 के संस्करण के एशियन गेम्स के प्रोग्राम में शामिल किए जाने के बाद कबड्डी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से देखा जाने लगा। तब से लेकर ये खेल हर एशियाई खेल का हिस्सा रहा है। एशियाई खेलों में कबड्डी सिर्फ पुरुषों का इवेंट हुआ करता था। बाद में साल 2010 से इस खेल प्रतियोगिता में महिलाओं की स्पर्धा भी शुरू हो गई। एशियाई खेलों में भारतीय कबड्डी टीम का दबदबा रहा है। साल 1990 के एशियाई खेल में 6 टीमों भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, जापान और नेपाल ने राउंड रॉबिन प्रारूप में प्रतिस्पर्धा की, जिसमें प्रत्येक टीम ने एक दूसरे के खिलाफ एक बार प्रतिस्पर्धा की। भारत पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहा और स्वर्ण पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई खेलों के इतिहास में अब तक हुए 9 संस्करणों में 8 बार स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं पिछले एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ऐसे में जापान के आईची नागोया में आयोजित हो रहे 20वें एशियन गेम्स में कबड्डी एक बार फिर सबसे रोमांचक खेलों में से एक है। इस बार पुरुष कबड्डी टीम की कप्तानी सुनील कुमार और महिला टीम की कप्तानी पुष्पा राणा कर रही हैं। अपनी टीम की तैयारियों पर भारतीय महिला कबड्डी कप्तान पुष्पा राणा कहती हैं,
6: हमारी जो मेन कॉम्पिटिटर टीम में है वो वैसे तो सारी अच्छी है, बट जो लास्ट 2-3 सालों से हमें टक्कर दे रही है वो चाइनीज ताइपाई है और एशियन ईरान की टीम है। लास्ट एशियन गेम में भी हमारा जो चाइनीज ताइपाई है वो सिर्फ हम एक पॉइंट से विन हुए थे, तो मुझे लगता है वो एक अच्छी टीम है और एक ईरान की टीम अच्छी है।
7: हाँ, काफी एक्साइटेड हूँ और 2023 में भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, तो मैं चाह रहा हूँ 2026 में भी सेम रहे, बिल्कुल मेडल लेके आएंगे। और कबड्डी से हमेशा एक्सपेक्टेशन रही है कि मेडल लेके आई है, और आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कबड्डी बिना मेडल के आई हो। देश के युवा को यही बोलना चाहूंगा कि ये धरती से जुड़ा हुआ गेम है, इसको सपोर्ट करें, और आपका जो एक्सपेक्टेशन है गोल्ड मेडल की वो डेफिनेटली हम पूरा करेंगे, फुलफिल करेंगे और काफी आपको एंटरटेन करेंगे।
0: कबड्डी की प्रतियोगिताएं 21 सितंबर से 26 सितंबर 2026 तक चलेंगी। तो जूडो की पकड़, कुश्ती के दाव पेच और कबड्डी की रेड और टैकल, इन तीनों खेलों की अपनी अलग पहचान है, लेकिन मंजिल एक ही है, देश के लिए शानदार प्रदर्शन। तो उम्मीद है कि इन तीनों खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की मेहनत रंग लाएगी और तिरंगा एक बार फिर गौरवान्वित होगा। तो देश के तिरंगे को गौरवान्वित करने के लिए हमारे खिलाड़ी लगातार मेहनत कर रहे हैं, और ऐसी ही मेहनत की है हमारे चेस खिलाड़ियों ने। 46 फिडे चेस ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ी जो हैं लगातार चेस बोर्ड पर अच्छा काम कर रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए चलते हैं संचित के पास।
8: जी बिल्कुल कविता, हर 2 साल में दुनिया भर की नेशनल टीम्स फिडे चेस ओलंपियाड में अपने झंडे तले इकट्ठा होती हैं, जो इस खेल में टीम कॉम्पिटिशन का सबसे बड़ा लेवल है।
9: हिनी ईदा एक स्वहिली या आकाशवाणी हम जम्बो वस्कली वेटू आफ्रिका मशवी के नमाहली पेंगी ने पोपोटे अंबा को ईदा ही नसिकी का टूना टंगाजीनी क्वेने क्लो हार्ट्स एल्फु को मीना टीसा मिया टीसा नाम सीनी यानी मीटा बैनी को मीना सीटा वा पेंवा वस्कली जाजी सासा टूना वाले टेनी की पिंडी मालूम। नैंडलिया कुछ क्लीजा ईदहिया की सहेलिया आकाशवाणी
10: वर्ल्ड सर्विस हम जम्बो असली पेंडवा व एशिया माशवाई के एशिया मगवाई भी ना बारा अफ्रीका न महाली पेंगी ने पोपोटे अम्बा को ईदाही न सिकी का टूना टंगाजीनी क्विने मासाफा या एल्फो तानो न थेलाथीनी पंगवेटू व की सहेली कुटोका ईद की सहेलिया
9: आकाशवाणी
10: उनावेजा कुछ क्लीजा कुटोका सा कुमिना साबा डाकिका अवेना टानो हाडी सा कुमिना नाने डाकिका अवेना टानो कीला सीकू

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8-0765-98-670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni.
1: जिलों में सभी में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहां प्रशिक्षण दिए जाते हैं, साथ ही साथ कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि अनुसंधान संस्थान हैं, आप और राज्यों के भी आपके विभाग होते हैं, कृषि विभाग, वहां से भी प्रशिक्षण लें। तो प्रशिक्षण जरूर लेनी चाहिए खाद्य प्रसंस्करण में, तभी आप अच्छा काम कर सकते हैं।
2: एक बात और कहना चाहूंगी, जैसे आपने भी बताया कि यहां प्रशिक्षण ले सकते हैं, अगर कोई कांटेक्ट नंबर हो, संपर्क सूत्र हो, तो आप हमारी कार्यक्रम में बताइए जिससे वो जुड़ सके। अगर कोई महिला जो हमारे कार्यक्रम या कोई पुरुष जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो इसका फायदा उठा सके।
1: मैं अपने कृषि विज्ञान केंद्र जो कि हमारा दिल्ली में स्थापित है, और हम लोग समय समय, अभी हमने पिछले हफ्ते ही आम के प्रसंस्करण पर एक हफ्ते का प्रशिक्षण आयोजित किया था, क्योंकि मौसम के अनुसार भी हम लोग करते हैं। मौसम में जब उपलब्ध उत्पाद हो तो उसको कैसे प्रसंस्कृत कर सकते हैं, तो मेरा नंबर चाहे तो नोट कर लें, 9818550652। इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं और कभी भी हमसे जानकारी लेना चाहे ले सकते हैं। प्रशिक्षण हम लोग समय समय पे आयोजित करते हैं, और एक और बात बता दूं, निशुल्क होते हैं, ताकि हमें ज्ञान देना है और आप एक उद्यमी के रूप में खड़ा करना है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, तो ये हम लोगों का विजन रहता है कि हमें उन्हें एक उद्यमी के रूप में खड़ा करना है।
2: एक बार नंबर और बता दिया
1: जी, मैं हिंदी में बोल

0: के पास इतना नहीं होता, तो ऐसे में बैंक उनको सहायता देता है। तो स्वयं सहायता समूह अगर बैंक से ऋण लेना चाहता है तो उनका ब्याज दर भी काफी कम होता है, तो सबसे बड़ा फायदा तो एक ये हो गया। और फिर उनकी एक राशि निर्धारित की जाती है कि प्रतिमाह आप इतना ईएमआई के रूप में वापस कर दें। तो ये
1: जी
0: सबसे अच्छा है कि स्वयं सहायता समूह बना लें, क्योंकि हर महिला में या हर पुरुष में एक ना एक गुण है। तो समूह में ये फायदा हो जाएगा कि एक महिला को बनाना आता है, अकाउंट
1: समझा।
0: संभालना
1: जी
0: बहुत अच्छा
1: जी
0: आता है, एक को बाजार करना बहुत अच्छा आता
1: जी
0: है, तो ग्रुप में ये एक सबसे बड़ा फायदा हो जाता है। क्योंकि अगर एक अकेला करना चाहेगा तो
1: मुश्किल
0: उसको
1: होगा।
0: बेचारे को बनाना भी है, पैक भी करना है, अकाउंटिंग भी करनी है और बाजार भी करना है, तो
1: जी
0: वो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है और आखिरकार वो हताश होके छोड़ देते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं समूह में आइए। समूह
1: जी
0: में आपका एक तो जो पूंजी है वो भी आपकी बराबर में बट के जा रही है, आप पे भार भी नहीं आ रहा कि मैंने इतनी सारी पूंजी लगा दी, आप मिलके पूंजी लगा रही हैं और जो मुनाफा है आप सब में बराबर बट रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा है कि समूह में आके प्रशिक्षण लेके काम को शुरू कर सकते हैं।
1: जी डिजिटल प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं इस
0: जी जी
1: समय, तो जो ये प्लेटफॉर्म चल रहा है, आप
0: चल
1: चीज
0: रहा है
1: बनाओ बहुत तेजी से
0: जी
1: वायरल हो
0: जी
1: जाए, तो
0: जी
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म की आप बात बताएं कि कैसे ये विस्तार में एक उद्योग के रूप में स्थापित करवा सकता है डिजिटल
0: बिल्कुल
1: प्लेटफॉर्म।
0: बहुत कर सकता है, क्योंकि आज की बात करें तो सबके हाथ में मोबाइल है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या शहरी क्षेत्र की बात करें, सबके हाथ में मोबाइल है। और अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम मोबाइल को एक कहेंगे कि एंटरटेनमेंट के रूप में देख रहे हैं, पर अब इसे हम अगर
1: उद्योग के रूप में
0: उद्योग के रूप में देखें, यानी
1: जी
0: कि हमें उससे क्या क्या फायदा
1: फायदा
0: हो
1: उठाना।
0: सकता है
1: जी
0: उसके रूप में देखें, तो क्या नहीं कर सकते आप। बहुत
1: जी
0: बड़ा एक आपका ये हथियार है मोबाइल आज के लिए, अगर आप उद्योग के रूप में इसको देखेंगे।
1: जी
0: तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग बात करी, आपके इतने सारे सोशल मीडिया एप्स हैं हमारे, कोई भी
1: जी
0: आप ले लीजिए, आपकी भाषा में भी वो ऐप हो गए हैं, जहाँ के भी आप हैं आपकी उस भाषा में भी वो ऐप हो गए हैं। तो
1: जी
0: वही आप करके आप उसमें अपने उत्पाद डालिए, लोगों को पता लगे, उसको उसमें बनाने का तरीका डालिए, आपने जहां से प्रशिक्षण लिया है, क्योंकि वहां से आपको प्रमाण पत्र ही मिलता है, तो
1: जी
0: उससे आ जाता है कि आपने हाँ सही प्रमाणित
1: जी
0: संस्था से
1: जी
0: आपने प्रशिक्षण लिया है, तो वो
1: जी
0: आपको और वैल्यू आपके काम की बढ़ाता है कि आपने सही जगह से लिया है तो आपका उत्पाद सही होगा।
1: उससे रेट भी आपको अच्छा
0: रेट
1: मिलेगा।
0: बिल्कुल आप फिर श्योरिटी से कह सकते कि नहीं मेरा उत्पाद है और इतने दिन चलेगा, इतना दिन टिका हुआ है। जैसे कोई भी खाद्य उत्पाद के लिए हमारी एक अथॉरिटी है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
1: जी
0: इनसे हमें प्रमाणीकरण दिलाना आवश्यक होता है कि हाँ मेरा उत्पाद सही है, सेफ है। तो वहां से भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जो कि हम प्रशिक्षण के दौरान बताते भी हैं कि कैसे आपने उसको लेना है प्रमाणीकरण, तो वो भी
1: जी
0: आपका नंबर लग जाता है, तो उससे आपके उत्पाद की वैल्यू और बढ़ जाती है। तो डिजिटल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है मैं तो कहूंगी, और सभी को आता भी है, पढ़ी
1: जी
0: लिखी भी हो हमारी महिला या ना भी पढ़ी
1: वो
0: लिखी हो,
1: इतनी कड़ी
0: वो
1: होती
0: कड़ी होती
1: है
0: कि
1: बस, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं
0: प्लेटफॉर्म नहीं
1: पता।
0: पता होता, बस उनको
1: जी
0: जानकारी नहीं होती। तो इससे काफी आप अच्छा फायदा उठा सकते हैं और उठाना भी चाहिए जब
1: जी
0: सबके हाथ में है ये चीज।
1: ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे बात हुई खाद्य
0: जी
1: प्रसंस्करण के उद्योग की संभावनाओं की, सरकार द्वारा इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए
0: जी
1: जा रहे हैं?
0: बहुत हैं योजनाएं, और इसका तो हमारा एक मंत्रालय ही है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय,
1: जी
0: जिसमें छोटे उद्योग के लिए और बड़े उद्योग के लिए सभी के लिए योजनाएं हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक
1: जी
0: हमारा एक उसी योजना में एक नाम है कि एक जिला एक उत्पाद, जिस जिले में जो चीज बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो उस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उस योजना में उसके उत्पादन से लेके बाजार तक की
1: जी
0: सारी चीजें शामिल,
1: जी
0: चाहे वो उसकी मशीन की बात हो, चाहे
1: जी
0: उसकी पैकिंग के लिए बात हो, चाहे
1: जी
0: उसके रजिस्ट्रेशन के, चाहे उसके में उसी उत्पाद के अलग अलग उत्पाद बनाने के प्रशिक्षण की बात हो, तो उसमें से किसी भी योजना को लेके आप फायदा उठा सकते हैं। बहुत कम ब्याज दर पे आपको ऋण के रूप में दिया जाता है। आपको मशीन खरीदनी है, जल्दी मान लीजिए आंवला है, आंवला सुखाने की मशीन चाहिए,
1: जी जी
0: तो आंवला का क्षेत्र जैसे हमारा यूपी का एक क्षेत्र है जो कि आंवला का भरपूर माना जाता है, तो वहां पे उस मशीन का आपको आसानी से मिल जाएगी। जैसे 2 लाख की मान लीजिए मशीन है तो आपको 50,000 की रियायत मिलगी, तो 1.5 लाख आपका लगा, तो
1: जी
0: काफी फायदा
1: जी
0: हो जाता है। तो उस मशीन का इस्तेमाल करके अपना सुखा के आप पैक करके आप बाजार कर सकते हैं। तो ये योजनाएं हैं, पर मैं कहूंगी योजनाओं के बारे में आपको पता कैसे लगेगा, इसके लिए आप प्रशिक्षण जब लेने आएंगे किसी भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में या किसी संस्थान में, वहां पे भी आपको इन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि
1: जी
0: आप कैसे फायदा उठा सकते हैं। हमारा मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमें सिर्फ उनको सिखाना है और भेज देना, हमारा होता है कि उनको सिखाना है, उनको बताना है, उनको जागरूक करना है कि क्या योजनाएं आपके लिए हैं जो सरकार इतनी मेहनत करके दे रही है,
1: जी
0: तो उनका फायदा कैसे उठा सकते हैं ताकि आप एक सफल उद्यमी के रूप में खड़े हो सकें।
1: आपने सफल उद्यमी की बात की,
0: जी
1: तो कोई बहन हो या भाई हो जो भी इस व्यापार को बढ़ाना चाह रहे हैं,
0: जी
1: अपने खाद्य प्रसंस्करण को
0: जी
1: के जरिए उद्योग स्थापित करना चाह रहे हैं, तो ये सफल उद्यमी बनने के लिए
0: जी
1: क्या क्या उनके अंदर गुण होने चाहिए, बहुत जरूरी है जानना।
0: सफल उद्यमी के लिए सबसे पहले कि एक संयम, देखिए हमें कोई भी अगर उद्योग शुरू करना है तो ये ना चले कि हमें कल ही सफलता मिल जाएगी, तो इसीलिए संयम का होना बहुत जरूरी है। पर एक बार आपने जब उस मुकाम पे पहुंच गए फिर आपको आगे बढ़ने से कोई

0: हीरो, फिर दूसरा आपका परिवार का साथ, क्योंकि अगर जब तक हमारे परिवार का साथ नहीं होगा उस काम के लिए तो हम उस काम को नहीं कर सकते, अगर साथ होगा तो हम और अच्छे से बढ़ चढ़ के कर सकते, एक आपस में आपसी पन आता है जो कि थोड़ा थोड़ा आजकल हम देख रहे हैं कि कम हो रहा है,
1: हाँ।
0: पर उससे और जुड़ाव होता है आपस में आपका कि हम समझते हैं कि नहीं हमारा व्यवसाय है हमें करना
1: बल्कि
0: है,
1: संयुक्त परिवार
0: संयुक्त
1: और
0: परिवार
1: इसका फायदा
0: फायदा
1: उठा,
0: उठा
1: सकता
0: सकते हैं। तो परिवार का साथ एक तो बहुत जरूरी है, और फिर आपको ये जानकारी लेने की रुचि निरंतर रहनी चाहिए, भले ही आप कितने स्तर पे पहुंच गए हों, सीखने की मतलब आपकी
1: लालसा
0: सीख,
1: होनी चाहिए,
0: लालसा रहनी चाहिए, तो आपका एक सफल उद्यमी आप बन सकते हैं।
1: अगर सच कहें तो अगर लालसा है, मन में जिज्ञासा है
0: जी,
1: किसी चीज की जानने की, सीखने की, और
0: जी,
1: संयम है सुनने की,
0: जी,
1: सुनाने की नहीं, सुनने की भी,
0: सुनने की,
1: सुनने की भी संयम है, तो ये मानना चाहिए कि आप आगे बढ़ने वाले हो,
0: जी,
1: और थोड़ा सा सबका सहयोग मिलेगा तो जरूर आप आगे बढ़ जाओगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो डॉक्टर रितु जी, चलते चलते
0: जी,
1: इस कार्यक्रम के जरिए और क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे जो किसान भाई इतनी मेहनत करके फसल उगा रहे हैं,
1: जी
0: तो उसके साथ अगर हम खाद्य प्रसंस्करण को जोड़ दें
1: जी
0: तो हमारे देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता, और इस सब में हम सबका साथ होके चलना बहुत जरूरी है।
1: साथ लेकर के चलेंगे, और जो हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनसे यही कहेंगे कि आप भी आगे बढ़िए अगर आपके अंदर हुनर है, कुछ आता है। और डॉक्टर रितु जी ने जो बताया कि प्रशिक्षण केंद्र भी है और इन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर भी बताया है,
0: जी,
1: तो एक बार और रितु जी बता दें कॉन्टेक्ट नंबर।
0: मेरा नंबर है 9818550652।
1: तो डॉक्टर रितु सिंह जी, ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाओं के विषय पर बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये बहुत ही काम की जानकारी, विषय था ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाएं, जानकारी की विषय दे रहे, इस बारे में जो जानकारी हमें दे रही थी डॉक्टर रितु सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र व नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रही थी यमुना।
3: तो वही खाद्य प्रसंस्करण से जुड़कर हमारे किसान भाई अपनी आय बढ़ा सकते हैं, और अधिक उत्पादन होने पर उनको वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और इस प्रकार लाभ ले सकते हैं। और अब करते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं ऋषिपाल नागर की आवाज़ में ये

0: तो भाई अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल नागर से ये भजन, और इसी के साथ ही राम संसार कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम।
1: इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7 बजने को है, अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और भी मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रपति नहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाबल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा

0: कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और HTT-40 सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह में उपस्थित थे। HAL ने भारतीय वायुसेना को दो हल्के विमान LCA और तेजस, इसके अलावा पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला HTT-40 भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने विमान का नाम अंकुर रखा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्षों में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का हिंदी प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम।
0: देखिए विनस बहन, अब जैसे पहले समय में होता था कि सारे काम हाथों से ही होते थे, जिसमें श्रम भी अधिक लगता था और उत्पादन भी इतना अधिक हमारे किसान भाई नहीं ले पाते थे, सटीक जानकारियों की भी कमी थी, चाहे वो मौसम के बारे में हो या फिर मिट्टी के बारे में हो या जलवायु परिवर्तन के बारे में हो, इतनी सटीक जानकारियाँ नहीं थी। लेकिन अभी समय बदल गया है और नई तकनीकों से, डिजिटल उपकरणों से किसान भाइयों को सटीक जानकारी मिल रही है, चाहे फिर वो उर्वरकों के बारे में हो, मिट्टी की सेहत के बारे में हो। फसल की निगरानी भी ड्रोन के द्वारा की जा रही है, इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कृषि में प्रयोग हो रहा है, जिसमें मौसम की सही जानकारी के साथ साथ जलवायु अनुकूल तकनीकों का प्रयोग करके हमारे किसान भाई कैसे जलवायु परिवर्तन के दौर में भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं, इन सब की जानकारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो कि विशेषज्ञों द्वारा दी जाती हैं, और हमारे जो साइंटिस्ट हैं लगातार इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, जिससे कि हमारे किसान नई नई तकनीकों से जुड़कर अधिक लाभ कमा सकें और खेती में ये नवाचार हमारे जो देश का विकास लगातार आगे बढ़ता रहे। और अगर हम बात करें कृषि में ड्रोन की भूमिका और अनुप्रयोग का, तो इससे संबंधित एक बातचीत लेकर आए हैं कृषि में ड्रोन की भूमिका और अनुप्रयोग। इसमें डॉक्टर आरुफ अहमद परे, प्रधान वैज्ञानिक कृषि अभियंत्री संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो सुनते हैं ये बातचीत।
2: किसान भाइयों, कृषि में तकनीकी का युग है और अगर आप पुराने तरीके से खेती करते रहे तो निश्चित तौर पे जो आपको फायदा मिलना चाहिए वो जल्दी नहीं मिलेगा और जो आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए नहीं बढ़ पाएगी। जिस तरीके से पहले आपको बैलों से खेती करते थे, उसके बाद में ट्रैक्टर आ गया, कल्टीवेटर आ गए, हैरो आ गए, उसके साथ साथ और विकास हुआ तो धीरे धीरे अब ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई। और ड्रोन टेक्नोलॉजी कृषि और किसानों के लिए किस तरीके से उपयोगी है और उसका किस तरीके से खेतीबाड़ी में हमारे किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं, इसकी विस्तार से जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राउफ अहमद परे, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि अभियांत्रिकी संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, ड्रोन तकनीक का जिक्र कर रहे हैं, पहले तो हमारे किसान भाइयों को बताइए कि है क्या ये
3: ड्रोन टेक्नोलॉजी। आप जानते हैं कि पहले जो हमारे किसान लोग थे कैसे खेती को आगे आगे बढ़ाते रहे, पहले बैलों से जैसे आपने बात की, और जब हम आज की बात करते हैं तो ड्रोन, आज किसान जानता है कि ड्रोन क्या है, नई तकनीक लेके आया है। पहले हमारे किसान भाई, जैसे सबसे ज्यादा किसान भाई समझ पाएंगे स्प्रेयर को, जो छिड़काव करते हैं उससे किसान भाइयों को ड्रोन टेक्नोलॉजी को समझने में सबसे आसानी होगी। हमारे किसान भाई कैसे छिड़काव करते हैं, एक स्प्रे लेके जाते हैं और खेतों में कर देते हैं। लेकिन ये जो ड्रोन है, जिसको हमारे किसान भाई बोलते हैं कि ये जहाज वाली मशीन है, हमने किसानों से बात भी की है, वो बोलते हैं ये जहाज वाली मशीन है, यानी वो समझते हैं कि ये खेती के लिए एक ऐसा जहाज है जो ऊपर से ही काम कर देता है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो जमीन पे ना रह के बल्कि हवा में उड़ के जो हमारे किसान में कुछ ऑपरेशंस है, चाहे वो छिड़काव है या बुआई करनी है, उससे कर पाते हैं। यह है ड्रोन की टेक्नोलॉजी।
2: तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है तो जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए किस तरीके से लाभकारी?
3: हमारे किसान भाई जानते हैं कि जो खेती में है, अगर हम चाहते हैं कि किसान की आय बढ़ जाए तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक, जो किसान हमारा किसान भाई है खाद डाल देता है या सीड डाल देता है, उसमें वो कितनी बचत कर सकता है, और दूसरा ये है कि जो वहाँ से निकलता है हमारा प्रोडक्ट्स, उसमें से कैसे हम वैल्यू ऐड कर पाएँ। तो उसके लिए जब हम ड्रोन की बात करते हैं तो किसान भाई बहुत ज़्यादा बीज का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा खाद का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको किसान भाई अपना के उसमें से जो लागत है वो कम कर सकते हैं। जैसे हमारा किसान भाई अगर बीज 60 kg इस्तेमाल करता है, हाथ से फैला देता है जमीन में, जिसको हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, वही सीड अगर हम बुआई करेंगे ड्रोन से, जो कि आगे आने वाला है कि ड्रोन से करेंगे, तो उसमें कम से कम 40-50% कम होगी उसकी ज़रूरत। इसी तरह हम छिड़काव की बात करते हैं, हालांकि छिड़काव आज भी हो रहा है ड्रोन से, छिड़काव करेंगे उसमें जो हमारे किसान भाई, एक तो ये है कि कितना वो केमिकल इस्तेमाल करते हैं उसमें तो कमी है, दूसरा जो हमारे किसानों का स्वास्थ्य है वो भी सही रह पाता है, तीसरा जो हम लेबर की बात करते हैं, हमारे किसान भाइयों को वक्त पे लेबर नहीं मिलता है, तो
2: जी
3: ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम मैक्सिमम एरिया कवर कर सकते हैं, जो लेबर की डिमांड रहती है और उससे कॉस्ट भी बढ़ता है उसको भी हम कम कर।
2: जिस तरीके से आपने बताया कि इससे बिजाई भी कर सकते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जो वर्षा आधारित होते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पे अगर बरसात से पहले ही ड्रोन के माध्यम से बिजाई करने का प्रावधान रहता है।
3: पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे वो हिमाचल है, उत्तराखंड है,
2: जी
3: वहाँ पे अगर आप देखेंगे मशीनरी का इस्तेमाल सबसे कम हो रहा है। उसका हमको वजह समझना पड़ेगा, क्योंकि ढलान पे किसी मशीन को लेना उतना आसान नहीं है, उसके
2: जी
3: लिए छोटे साइज की मशीन चाहिए, उसके लिए कम वजन की मशीन चाहिए। लेकिन चूंकि ड्रोन को जमीन से नहीं चलाना है, उड़ाना है हवा में, तो इसलिए जो हमारे खासतौर पर बाग है ढलान पे, उसमें से अगर आपको छिड़काव करना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी ड्रोन है। तो इसलिए जो पहाड़ी क्षेत्र में है वो ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं।

0: दूसरी जो आपने बात की कि जो बारिश से पहले की बात है,
1: जी
0: ड्रोन में हमारा यही फायदा है कि अगर बारिश हो गई फॉर एग्जांपल, तो बारिश के बाद बहुत दिन तक हम ट्रैक्टर को चला ही नहीं पाते हैं खेत में। लेकिन ड्रोन के लिए ऐसा नहीं है, बस ड्रोन के लिए वेदर आज ठीक है, मौसम आज ठीक है, तो हम ड्रोन को चला सकते, चाहे जमीन की कंडीशन कैसी भी हो सकता है जमीन गीली हो, उसमें मशीन ना चल पाए, लेकिन ड्रोन तो चल पाता है।
1: तो जब ड्रोन का प्रयोग हम जैसे खरपतवार नाशी है, कीटनाशक या कोई फफूंद नाशक दवा के लिए प्रयोग करते हैं, तो कहते हैं कि ड्रोन उसी जगह पे छिड़काव करता है जहां पे कीटों का प्रकोप होता है।
0: को हम आज की डेट में प्रिसीजन एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। इसका
1: जी
0: मतलब है कि जहां पे बीमारी है वहीं पे उसका रोकथाम कर लेना, और कितना डालना है जितनी बीमारी है उसी
1: जी
0: हिसाब से। अगर बीमारी छोटे क्षेत्र की है तो उसमें कम ही दवाई डालनी है, और अगर ज्यादा है तो उसी हिसाब से। ये हम ड्रोन के जरिए से कर पाते हैं कि जहां जहां हमको लगता है कि यहाँ पे बीमारी है, उसको पहचान लेना कि बीमारी कौन सी है ड्रोन के कैमरा के थ्रू, और उसके बाद वहीं पे छिड़काव करना, ये ड्रोन से ही संभव है।
1: जो किसान भाई मान लीजिए जिनके पास छोटे खेत हैं, कम क्षेत्रफल है, और उसके अलावा ड्रोन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको जो छोटे किसानों तक इसकी पहुंच हो, किस तरीके से ये इसको मैनेज किया जाएगा?
0: हम जानते हैं कि एक ड्रोन कम से कम 10 लाख में तो आ ही जाता है,
1: जी
0: लेकिन ये सरकार जान चुकी है कि ड्रोन का इस्तेमाल तो कृषि में होना ही है, तो इसीलिए सरकार की ओर जोर है कि जो ड्रोन को खरीदने के लिए कस्टम हायरिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। मतलब इसमें सरकार ने अभी सब्सिडी का भी रखा है, आगे अगर किसान भाई आपस में एक FPO की सूरत में आ जाएं और ड्रोन लेके जाएं, तो उनको सरकार की ओर से भी कम से कम 50% उसमें सब्सिडी मिले। केवी केस है उनके थ्रू भी सरकार इसको फार्मर्स के खेत पे, कृषि पे डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते, तो उसमें भी जो लोग आगे आना चाहेंगे वो भी उसमें से अपना मुनाफा कमा सकते हैं, और छोटे छोटे किसानों के खेत तक वो ड्रोन पहुंचा सकते।
1: डॉक्टर साहब, जब ड्रोन का प्रयोग होगा, जो काम मान लीजिए 10 किसान मिलकर के, 10 मजदूर मिलकर के करेंगे, और ड्रोन से वो अकेले संभव हो सकता है, तो ड्रोन से जो रोजगार की समस्या है उसका समाधान कैसे होगा?
0: गांव से शहर की ओर
1: पलायन हो रहा है।
0: लोग जा रहे हैं, क्योंकि शहरों में उनको अपना रोजगार के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारा जो युवा है, जो पढ़ के आया है, उसके लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जो कि ड्रोन है, जिसमें से ज़रूरत है कि हमको एक पायलट होना चाहिए जो उसको चला दे, ग्राउंड पे एक आदमी रहेगा जो उसका रिकॉर्ड रखेगा, तो कम से कम हम समझ सकते हैं कि एक ड्रोन से कम 3 युवा तो जुड़ सकते हैं। हम देखते हैं कि एक ड्रोन से अगर 3 युवा जुड़ सकते हैं, जो अपना अच्छा सा रोजगार भी कमा सकते हैं और उस ड्रोन को लोगों की खेतों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हम रोजगार की बात करते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम आई है कि लोग गांव से शहर की ओर जा रहे हैं, तो लेबर ही कम होता जा रहा है,
1: जी
0: और दूसरी साइड से जो हमारे युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको हम गांव लेवल पे ही एक रोजगार का ऑप्शन दे रहे हैं ड्रोन की सूरत में, और सरकार ने उनके लिए स्पेशली सब्सिडी रखा है कि अगर वो लेना चाहेंगे वो भी ड्रोन को फार्मर्स तक पहुंचा सकते हैं और अपना रोजगार कमा सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, क्योंकि ड्रोन को चलाना भी एक तकनीक है, तो इसके लिए जो युवा साथी उसे जुड़ना चाहेंगे, क्या उनके लिए कोई प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चलाया जाता है?
0: सरकार की ओर से बहुत सारे सेंटर्स अभी एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं जहाँ पर किसानों को और जो युवा है उनको ट्रेनिंग मिल सकती है। जैसे अभी राहुरी में पहला सेंटर खोला गया जो कि इसके लिए एक लाइसेंस दे रहा है, कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद एक लाइसेंस मिल रहा है कि हाँ ये सही से ड्रोन चला सकता है और इसका इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे आगे आगे सेंटर्स आ रहे हैं, केवी केज के थ्रू भी आ जाएंगे, जहाँ से आप परीक्षा इस्तेमाल कर सक हासिल कर सकते हैं और ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, इस क्षेत्र में हमारे कुछ जो सहकारी और सरकारी और कुछ प्राइवेट कंपनियां भी आगे आ रही हैं, जैसे इफको है, वो भी इस पे काफ़ी कार्य कर रही है। उसके द्वारा जो हमारे सहकारी क्षेत्र से जुड़े हुए किसान हैं, वो किस तरीके से लाभ ले सकते हैं?
0: हम जानते हैं।

0: है कि जैसे भी आप कोई भी सेक्टर लेके जाइए, चाहे वो इंडस्ट्री है चाहे वो सर्विस सेक्टर है, टेक्नोलॉजी के जोर से बहुत आगे पकड़ी है। कृषि की ओर ही अब टेक्नोलॉजी का जोर आ रहा है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि सबकी नज़र कृषि पे ही पड़ी है। चाहे वो हमारे युवा है जो IIT से आते हैं, IIM से आते हैं, स्टार्टअप्स की शक्ल में है, या कोई प्राइवेट कंपनी है, तो अगर हमारे किसान भाइयों तक वो टेक्नोलॉजी पहुंच रही है और उनकी बचत हो रही है, और उन तक चाहे वो सरकार की ओर से आ रही है या कोई प्राइवेट पार्टनर है, कोई स्टार्टअप है, तो उसमें उनको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि वो सही तौर से उसका इस्तेमाल हो रहा है और उनको कितना लाभ मिल रहा है, तो उसको अपने खेत पे ले सकते।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे ड्रोन प्रयोग होते हैं, इसमें बीज वाले, खाद वाले या आपके उर्वरक छिड़कने वाले, एक ही ड्रोन का प्रयोग किया जा सकता है कि इसके लिए अलग अलग छोटे बड़े इस्तेमाल किए जाते हैं?
0: ड्रोन का अपना एक साइज है, ओवरऑल ड्रोन का स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन हम जो ऑपरेशन करते हैं, चाहे हम बुआई करते हैं, छिड़काव करते हैं, उसके हिसाब से वो वाला पार्ट हमको ऐड करना पड़ता है।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारा कहने का मतलब ये था कि जैसे कि जब हम बिजाई करते हैं तो सीड ड्रिल है, उसके साथ फर्टिलाइजर डालते हैं तो फर्टी सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं, अगर हमें स्प्रे करना है तो स्प्रेयर का करते हैं, तो क्या ड्रोन में, एक ही ड्रोन में सारी सुविधाएं
0: हाँ
1: उपलब्ध होती हैं?
0: बिल्कुल, एक एक ही ड्रोन में, मेरा ये भी यही कहना था कि ड्रोन तो एक ही खरीदना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ जो छोटे छोटे कंपोनेंट है वो हमको रखने पड़ेंगे। लेकिन कंप्यूटर तो जैसे हम हर एक के लिए अलग अलग मशीन, जैसे बुआई के लिए अलग, छिड़काव के लिए अलग, वैसा तो ड्रोन के साथ हमको जरूरत नहीं है।
1: तो डॉक्टर साहब, इसको कभी कभी देश में बड़ी आपदा, इस तरीके की कोई दिक्कत आ जाती है, जैसे टिड्डी का प्रकोप हो गया, बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी क्या प्रयोग किया जा सकता है?
0: जैसे फ्लडिंग हो गया, हमारे किसान भाई बता देते हैं कि चलिए 1 एकड़ हमारा खराब हो गया, इंश्योरेंस कंपनी बता रहे नहीं
1: जी
0: आधा एकड़, उसको सही से करने के लिए कि एग्जैक्ट कितना है उसमें ड्रोन का इस्तेमाल है। कहीं पे बीमारी लग गई, देखिए हमने कोरोना के टाइम में देख लिया कि एक आदमी दूसरे के नजदीक नहीं जा पाता था, ऐसे ही खेत में बीमारी लग सकती है जहां आदमी का जाना सही नहीं है, तो उसमें भी ड्रोन के जरिए हम जान सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, कौन सी बीमारी लगी है, कितने क्षेत्र में लगी है, तो उस बड़े अवसर पर भी ड्रोन का इस्तेमाल।
1: लेकिन इसको अपनाने में दिक्कत कहाँ पर आ रही है डॉक्टर साहब?
0: कोई भी नई चीज़ जब आती है तो पहले दिक्कतें आती है, हमारे पास स्किल पावर चाहिए, मतलब एक ऐसा युवा चाहिए, ऐसा किसान चाहिए जिसको समझ में हो कि ड्रोन को कैसे चलाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये एक साइड है। दूसरा साइड ये है कि जब हम ड्रोन के साथ किसी चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, जैसे आप केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खेत पे कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि साइड वाले के खेत पे चला जाए, तो
1: जी
0: इसके लिए सरकार अभी गाइडलाइन बना रही है। आप देखे हैं कि सरकार की ओर से ऑलरेडी एक गाइडलाइन रिलीज हुई है कि क्या जब आप छिड़काव करेंगे तो कितने घंटे बाद आप उस खेत में जाएंगे, कैसे आप ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, क्या आपको जरूरी होना चाहिए कवर, ये सब चीजें। तो अब जब हम क्रॉप में यूज करेंगे, जैसे हम पैड़ी में करेंगे या गेहूं में करेंगे, तो उसके लिए भी सरकार की ओर से गाइडलाइन आ रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो प्रॉब्लम आ रही है वो कम होती जा रही है।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल, दिक्कतें जो आती हैं वो धीरे धीरे कम होंगी, और नई तकनीक आती है उसको किसान भाइयों अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ आपका जो फसलों का उत्पादन भी अच्छा होगा, उसके साथ आपकी जो लागत कम होगी और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। डॉक्टर राउफ, आप हमारे स्टूडियो में आए, किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो भाई अभी आप सुन रहे थे ये बहुत ही काम की जानकारी जो हमारे भाइयों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही फायदेमंद होगी, और विषय था कृषि में ड्रोन की भूमिका और अनुप्रयोग। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राउफ अहमद परे, प्रधान वैज्ञानिक कृषि अभियांत्रिकी संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूना नई दिल्ली से, और इनसे पूसा नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल। और देखिए बहुत ही कामकारी जानकारी थी कि ड्रोन से बुआई और छिड़काव करने से लागत और लेबर में कैसे कमी की जा सकती है, श्रम की भी बचत होती है इसमें, और ड्रोन से खेती में हो रही प्रक्रिया में निगरानी कैसे की जा सकती है, ये बहुत ही फायदे की बात है कि ड्रोन की मदद से आगामी मौसम की स्थिति में भी पता लगाया जा सकता है।
3: बिल्कुल, और अब सुनते हैं ज्ञानेंद्र सरदाना से ये किसान गीत।

अभी आप सुन रहे थे ज्ञानेंद्र सरदाना से ये किसान गीत। और अगर योजना की बात करें तो नमो ड्रोन दीदी योजना, जैसे कि अभी हमने ड्रोन पे आपको बातचीत भी सुनवाई, उसी तरीके से जो नाम से ही पता चल रहा है ड्रोन दीदी ये योजना महिलाओं से जुड़ी हुई है, जिसमें महिलाओं को 15 दिन की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें ड्रोन उड़ाना, डेटा विश्लेषण और उसका रख रखाव किस तरह से किया जाता है इसके बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दी जाती है। और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो महिलाएँ हैं खेतों में कीटनाशक तरल उर्वरकों का छिड़काव और फसलों की निगरानी जैसे कार्य के लिए किसानों को किराए पर ड्रोन सेवा देती हैं। इस जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाएं और उन्हें रोजगार के नए अवसर दें। और इसके साथ साथ अगर हम अपने कार्यक्रम की बात करें तो कल है शनिवार और शनिवार को ग्राम संसार कार्यक्रम में हेलो ग्राम संसार फोन इन कार्यक्रम प्रसारित

0: तो कल है शनिवार, और शनिवार को ग्राम संसार कार्यक्रम में हेलो ग्राम संसार फोन इन कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, जिसमें फ़ोन के ज़रिए आप हमें अपनी फरमाइश बताते, अपने पसंद के कलाकार और अपने पसंद के गीतों के बारे में बताते हैं, और हम आपकी फरमाइश को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसके साथ साथ अगर कृषि जगत कार्यक्रम की बात करें तो कल किसान वाणी कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें कि फूलों की खेती में नवाचार और विविधीकरण के आयामों के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टर ऋतु जैन आपको जानकारी देंगी। तो किसान वाणी कार्यक्रम और हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल भी ना भूलें।
1: और साथ हम ये भी कहेंगे कि हमारे सुनने वाले सभी भाइयों को हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आपके सुझाव और आपकी प्रतिक्रियाएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृहकांश द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी दिल्ली। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं, अपनी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, ताकि हमारे कार्यक्रम को हम और बेहतर रूप में आपके लिए लेकर आ सकें।
0: और अब सुनवाते हैं आपको ब्रिजपाल सिंह जरोरा की आवाज़ में ये उपदेश।

0: अभी आप सुन रहे थे ब्रजपाल सिंह चरोड़ा की आवाज़ में ये उपदेश। इसके साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। शाम के 7:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं गजलों पर केंद्रित कार्यक्रम।

जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने गज़ल सुनी और आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से। श्रोताओं, समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 7:40 हो चुके हैं और सुनते हैं कार्यक्रम की आखिरी और आखिरी गज़ल जगजीत सिंह की आवाज़ में ही।

0: हेरिटेज क्लब योजना का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा विभाग तथा दिल्ली अभिलेखागार द्वारा हेरिटेज क्लबों के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए विभिन्न व्यवहारिक और छात्र केंद्रित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा और शिक्षा मंत्री आशीष सूद उपस्थित रहे। एक रिपोर्ट।
1: इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में दिल्ली के 75 CM श्री स्कूलों में हेरिटेज क्लब

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। मतदान के लिए दो स्लॉट निर्धारित किए गए थे। दिन के समय कक्षाएं लेने वाले छात्रों के लिए सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, वहीं सायंकाल वाले छात्रों के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। मतदान के लिए कुल 1000 ईवीएम व्यवस्था की गई थी, जिनमें से 960 का इस्तेमाल मतदान के लिए

0: समाचार के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने राजघाट स्थित गांधी दर्शन से सेवा संकल्प खादी महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया। ये महोत्सव 17 अक्टूबर तक देश भर में मनाया जाएगा। कार्यक्रम में KVIC के ई कॉमर्स पोर्टल समेत 5 डिजिटल सेवाओं की शुरुआत भी की।

0: केंद्र सरकार ने दिल्ली में एमबीबीएस की 100 सीट बढ़ाने का प्रावधान कर दिया है। ये सीटें मैदान गढ़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से जुड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स संस्थान को दी गई हैं। इस केंद्र में 16 विभागों की ओपीडी शुरू कर दी गई है और कुल मिलाकर 970 बिस्तरों वाला अस्पताल खोला जाएगा। संस्थान में शैक्षणिक गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं और इसी के तहत पहले एमबीबीएस कर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों और अन्य लाभार्थियों के लिए हैं। वहीं बाकी 50% आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के लिए होंगे। केंद्र सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा को 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक भंडारित चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा अपरिवर्तित रहेगी और केवल 15 दिनों तक की खपत तक ही सीमित रहेगी। एक रिपोर्ट।
1: मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम थोक उपभोक्ताओं के हितों और घरेलू चीनी बाजार में स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

का 2 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा उन्होंने एक चार पहिया वाहन भी जब्त किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी 10 करोड़ रुपए की रंगदारी के मामले में भी वांछित था। मामले की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 96 ग्राम पिघला हुआ सोना, 2 सोने के सिक्के, 1 सोने की चेन और 1 हीरे का सेट सहित 1 मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने निवेश के नाम पर पीड़िता से लगभग 60 लाख रुपए के आभूषण और नकदी की ठगी की। मामले की जांच जारी है। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर CGST की दक्षिणी दिल्ली के आयुक्त के कार्यालय ने लोहे और इस्पात के व्यापार से जुड़ी एक फर्म के मालिक को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC के खिलाफ चल रही है कार्रवाई का हिस्सा है। आरोपी को CGST अधिनियम 2017 की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि मालिक को फर्जी चालानों के माध्यम से 25 करोड़ रुपए से अधिक के अमान्य ITC के धोखाधड़ी, पूर्ण लाभ उपयोग और हस्तांतरण से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध रूप से भारत में रह रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों को पश्चिम विहार क्षेत्र में ग्रीस का वीजा हासिल करने की कोशिश के दौरान पकड़ा गया। जांच के दौरान दोनों अवैध प्रवासी वैध पहचान या यात्रा दस्तावेज पेश करने में असफल रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में छत्तीसगढ़ से आए युवा ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल क्रिएटर्स के साथ मुलाकात

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का हिंदी प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 8 बज चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम गीत मालिका का।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है।

जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है अजनबी गीत के साथ, और आप भी समझ गए होंगे कि आज हम बात करेंगे, जी हाँ, अजनबी, स्ट्रेंज, जिन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। सड़क पर साथ चलते चलते सैकड़ों चेहरे, मेट्रो में सामने बैठा हुआ इंसान, या फिर किसी बस में, ऑटो में, या कैब ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइवर, ये सब अजनबी ही तो हैं। लेकिन

किसी अनजान इंसान से व्यक्ति से कह देते हैं। कभी कभी आपने नोटिस भी किया होगा, ट्रेन की बर्थ पर बैठकर हम पूरे सफ़र में उस अजनबी से सारी बातें कह डालते हैं जिसे हम जानते भी नहीं हैं, या फिर चाय पीते हुए कोई हमें अनजान मिलता है तो उससे सारी बातें कह डालते हैं। अजनबी व्यक्ति के सामने कोई फिल्टर नहीं होता, कोई भी कहें कि झूठ नहीं होता है, क्योंकि हमें डर ही नहीं होता है कि हम किसी को बताएंगे तो वो बात आगे जाएगी या फिर वो कुछ जज करेगा। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा।

जी हाँ श्रोताओं, दिल से फिल्म से गीत अभी आपने सुना उदित नारायण की आवाज़ में, साथ में महालक्ष्मी। इस गीत को लिखा गुलजार ने और संगीत दिया AR रहमान ने। हम बात करें उस अजनबी चेहरों की जो आज आपकी ज़िंदगी में वो खास शख्स बन चुके हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते। कभी कभी कोई अजनबी अचानक हमारी ज़िंदगी में आता है और बस कुछ ही पलों में एक गहरी छाप छोड़ कर चला जाता है।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने की सुना विवाह फिल्म से उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम गीत मालिका से। मैं हूँ आपके साथ चेतना। हम बात कर रहे हैं उस अजनबी की जिसे आप जानते भी नहीं और वो आपका कुछ खास बन जाता है। अजनबी शहर है, अजनबी रास्ते, चलो संग चले कुछ पल के वास्ते। क्या पता कौन कहाँ हो और बस दिल में ही रह जाए दिल की बातें। जी हाँ, कभी कभी अजनबी जो होते हैं ना, वो भी हमारे दिल के इतने करीब आ जाते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि वो अजनबी थे।

आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम गीत मालिका से और ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:00 बजकर पूरे 28 मिनट और 40 सेकंड हुए हैं।

श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम गीत मालिका से और अभी आपने गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, साथ में सुरेश वाडेकर और फिल्म कभी अजनबी थे। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में प्रसारित सभी गीत आप पसंद कर रहे होंगे। अपनी प्रतिक्रियाएं भेजना ना भूलें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं ये अगला गीत।

श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम गीत मालिका से और समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:40 हो चुके हैं। तो अजनबी कब बन गए दोस्त, आज हमने बात करी, लेकिन आखिरी गीत के साथ विशाल डडलानी और शिल्पा राव की आवाज़ के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, लेकिन मिलेंगे 11:10 पर लेकर कार्यक्रम फिल्म संगीत का। फिलहाल मुझे इस कार्यक्रम से जाना होगा, आपसे मिलेंगे रात्रि में 11:10 पर। अपनी दोस्त चेतना को अनुमति दें। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीएनएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी

0: डॉक्टर जयशंकर ने नेपाल में हाल में आई बाढ़ में जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक की है। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक समझौते को शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई सवाल पूछे। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला HTT-40 प्रशिक्षण विमान भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं।
2: आज हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड थ्रू अ नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की मसौदा सूची जारी कर दी है। इस सूची में 784 मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्रों की अंतिम सूची 25 सितंबर को प्रकाशित होगी। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया में एक ही देश की लगभग 30 कंपनियां विभिन्न पवेलियनों में भाग ले रही हैं।
3: वेरी गुड रिस्पॉन्स,
4: काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। गोलमेज बैठकों में कई देशों ने बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया है। जापान

0: और सिंगापुर के पवेलियन में 30 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इनमें नीदरलैंड और स्वीडन प्रमुख हैं। इससे आगे की संभावनाएं काफी अच्छी नजर आ रही हैं।
1: लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड जर्नी अहेड।
2: प्रधानमंत्री जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों के जीवन को बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
3: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया। इसे वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था के बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। नीति आयोग 3 प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है। शासी परिषद प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लाती है। स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत नीति आयोग की टीमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती हैं। वहीं आकांक्षी जिला कार्यक्रम मापे गए परिणामों के आधार पर जिलों की रैंकिंग करता है और इन परिणामों को सार्वजनिक करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
4: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है और केंद्र राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
5: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये थिंक टैंक की तरह काम करता है।
3: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। मजबूत राज्य अब मजबूत राष्ट्र की स्पष्ट नींव बन चुके हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने आज पठानकोट जिले से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने माधोपुर से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का समापन 30 सितंबर को जलंधर में होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने छात्र संघ चुनाव के दौरान लिंगदो समिति की सिफारिशों के बार बार उल्लंघन को देखते हुए ये निर्देश दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हो गया, मतगणना कल होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी एनटीए की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई। घटना में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटनास्थल पर बचाव कार्य चल रहा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि यह संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। सलाम।

0: बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों से सेंसेक्स में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 20 अंक की गिरावट देखी गई और ये 74,295 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ 23,346 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के तुलना में 8 पैसे बढ़कर 95.88 रुपए पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में कल तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग अलग नाम और चुनावी चिन्ह आवंटित किए। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India and UAE reaffirm their commitment to continue cooperation in promoting regional security and stability. UAE President dials Prime Minister Narendra Modi. New Delhi expresses deep concern over escalating security situation in Red Sea region, condemns attack on Saudi Arabia's sovereign territory. Hindustan Aeronautics Limited hands over twin-seater Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force. Election Commission allots separate names and electoral symbols to rival factions of Trinamool Congress. Government relaxes sugar stock holding limit for bulk consumers from 15 to 30 days. And in Asian Games, Indian women's cricket team storms into semi-finals, beating hosts Japan by 8 wickets in quarter-final. And now the news in detail. India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi today received a telephone call from President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership, including in the areas of energy, defense, technology, investment and health. The UAE president conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. Mr. Modi appreciated the participation of Crown Prince Sheikh Khalid in the BRICS summit and the UAE's cooperation and partnership in achieving substantive outcomes under India's presidency. India has expressed deep concern over the escalating security situation in the Red Sea region. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal condemned the attacks on Saudi Arabia's sovereign territory, including attacks targeting civilians and economic assets. He said India had also issued a statement following the attempted attack on the holy city of Mecca.
3: Such attacks, I need not elaborate or reiterate, they vitiate the regional security, they impact or undermine regional peace and security, and also threaten freedom of navigation through the Bab al-Mandeb. And obviously, for various reasons, this is totally unacceptable to us. We hope that there is early restoration of peace and stability in the region.
2: On the collision between a Pakistan Navy vessel and an Indian warship, Mr. Jaiswal said, India had taken note of Pakistan's response to its protest. He categorically rejected the allegations and insinuations made by Pakistan.
3: The Pakistani side has once again been advised about the need for all military

0: In reply, India overhauled the target, posting 59 for 2 in just 5 overs. Shefali Verma led the chase with an unbeaten 40 off 15 balls. Harmanpreet Kaur-led Indian team will now face Bangladesh in the second semi-final on Sunday. The first semi-final match will be played between Pakistan and Sri Lanka on the same day. The opening ceremony of the Asian Games 2026 at Aichi, Nagoya in Japan will be held tomorrow. For India, double Olympic medalist Manu Bhakar and shot putter Tajinder Pal Singh Tur will lead the contingent. The 20th edition of the Asian Games will run from tomorrow until the 4th of next month. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and UAE reaffirmed their commitment to continue cooperation in promoting regional security and stability. UAE President dials Prime Minister Narendra Modi. New Delhi expresses deep concern over escalating security situation in Red Sea region, condemns attack on Saudi Arabia's sovereign territory. Hindustan Aeronautics Limited hands over twin-seater Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force. Election Commission allowed separate names and electoral symbols to rival factions of Trinamool Congress. Government relaxes sugar stock holding limit for bulk consumers from 15 to 30 days. And in Asian Games, Indian women's cricket team storms into semi-finals, beating host Japan by 8 wickets in quarter-final. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात ने इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने में तआवुन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। भारत ने बहिरे अहमर खित्ते में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरतेहाल पर तशवीश का इजहार किया है और सऊदी अरब के खुद मुख्तार सरजमीन पर हमले की मजम्मत की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय फिजाइया को 2 सीटों वाले तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारे सुपुर्द किए। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के हरीफ धड़ों को अलग अलग नाम और इंतखाबी निशानात अलॉट किए हैं। हुकूमत ने थोक गाहकों के लिए चीनी जखीरा करने की हद 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। और एशियाई खेलों में खवातीन की भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई ने इलाकाई अमन और सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने की कोशिशों में मुसलसल तआवुन और इश्तराक के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का टेलीफोन मौसूल हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया के हालात पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए नए इकदामात के बारे में भी गुफ्तगू की। इसमें तवानाई, दिफा, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और सेहत जैसे शोबे शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने भारत की कामयाब ब्रिक्स सदारत पर वज़ीर आज़म मोदी को मुबारकबाद दी। जनाब मोदी ने ब्रिक्स सरबरा मीटिंग में वलीहद शेख खालिद की शिरकत और भारत की सदारत के दौरान अहम नतायज हासिल करने में यूएई के तआवुन और शराकतदारी को भी सराहा। यूएई के सदर ने वज़ीर आज़म मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद दी और इस मौके पर उनके लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले के दौरान मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में नए तकर्रुर पाने वाले नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुरी नामे तकसीम करेंगे। ये प्रोग्राम मुल्क भर में 45 मकामात पर मुनक्किद किया जाएगा। इस मौके पर जनाब मोदी तकरीब से खिताब भी करेंगे। नई तकर्रुरी पाने वाले उम्मीदवार भारत सरकार की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में खिदमात अंजाम देंगे, जिनमें महकमे महसूलात, वजारत रेलवे, वजारत दाखिला, वजारत सेहत व खानदानी बहबूद, मालियाती खिदमात का महकमा और वजारत दिफा समेत दीगर इदारे शामिल हैं। भारत ने बुहरे अहमर में सलामती की बिगड़ती हुई सूरतहाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। आज नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब के खुद मुख्तार इलाके पर हमलों की मजम्मत की है, जिनमें शहरियों और इकतसादी असासों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि मुकदस शहर मक्का पर हुए हमले की कोशिश के बाद भारत ने बयान जारी किया था। पाकिस्तानी बहरी जहाज और भारतीय बहरी जहाज के दरमियान हुए तसादम के

0: बारे में इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने अपने एहतजाज पर पाकिस्तान के रद्दअमल का नोटिस लिया है। जनाब जायसवाल ने पाकिस्तान की जानिब से लगाए गए इल्जाम और धमकियों को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: जनाब जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी बहरी जहाज हुनैन के जरिए खतरनाक तरीके से आगे निकलने की कोशिश फौजी मशकों, कलाबाजियों और फौजी नकलो हरकत के एडवांस नोटिस से मुतालिक भारत पाकिस्तान के 1991 माहदे के आर्टिकल 10 की सरी खिलाफ वर्जी है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी बहरी जहाज ने समंदर में टक्कर से बचने से मुतालिक बैन अल-अक़वामी जाब्तों की भी खिलाफ वर्जी की है। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि योग मौजूदा दौर में बढ़ते हुए जहनी तनाव के दरमियान जिस्मानी और दिमागी सेहत, ध्यान, खुद आगाही और जहनी तवाजुन को बेहतर बनाने में मदद फराहम कर सकता है। नायब सदर ने यह बात महाराष्ट्र के लोनावला में कैवल्य धाम में गोवर्धन दास सेकसरिया कॉलेज ऑफ योगा एंड कल्चरल सिंथेसिस की प्लेटिनम जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए कही। जनाब राधा कृष्णन ने योग की तालीम, तहकीक और सकाफती मुतालात के दरमियान मजकूरा इदारे की 75 साल खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि कैवल्य धाम के बानी स्वामी कुवल्यनंदन ने 1924 में योग के साइंसी मुताले की बुनियाद रखी थी। उन्होंने कहा कि योग महज एक नस्ल की रिवायत नहीं है बल्कि एक ऐसा विरसा है जिसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कोशिशों और अकवामे मुत्तहदा की जानिब से 21 जून को योग का आलमी दिन करार दिए जाने के बाद योग को आलमी सतह पर शनाख्त हासिल हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका यह सफर जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और मुसलसल और अनथक अज़्म से इबारत है जो आज भी पूरी मजबूती के साथ जारी है। खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के इस नज़रिए से रहनुमाई हासिल करते हुए हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के हदफ के हसूल के लिए मुसलसल काम कर रही है। जामे तरक्की और समाज को बाख्तियार बनाने के जरिए ये अज़्म लोगों की जिंदगियों में तब्दीली ला रहा है। आज सेवा संकल्प अभियान की खसूसी सीरीज के तहत हम नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के जरिए इस नजरिए को अमली जामा पहनाए जाने की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को काबीना की एक करारदाद के जरिए प्लानिंग कमीशन की जगह ली। इससे फंड फ्राहम करने वाले इदारे के बजाय पॉलिसी साजी के इदारे के तौर पर तश्कील दिया गया। नीति आयोग के 3 अहम अज्जा हैं। गवर्निंग काउंसिल वजीर आजम और तमाम वज़राए आला को एक ही प्लेटफॉर्म पर यकजा करती है। रियासतों को ताउन फराहम करने से मुतालिक मिशन नीति आयोग की टीमों को रियासती हुकूमतों के अंदर काम करने के लिए तैनात करता है। उमंगों वाले अजला प्रोग्राम जिलों की कारकर्दगी को मुकर्रा पैमानों पर जांचता है और नतायज शाये करता है। 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर आजम ने मोदी ने कहा था कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए मरकज और रियासतें एक टीम के तौर पर मिलकर काम कर रहे हैं।
3: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
2: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए नीति आयोग के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग के क्याम से ताउन पर मबनी वफाकियत को फरोग मिला है और ये मरकज रियासती हुकूमतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को हिकमत अमली और तकनीकी मशवरे फराहम करता है।
4: नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसका लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये थिंक टैंक की तरह काम करता है और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करता है। सारी स्कीम्स मॉनिटरिंग करने की वजह से स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बदलाव आया है।
2: नीति आयोग

0: भारत सरकार के अहम पॉलिसी थिंक टैंक और मरकज और रियासतों के दरमियान पॉलिसी से मुतालिक तबादले ख्याल के एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रहा है। मजबूत रियासतें अब एक मजबूत मुल्क की वाजह बुनियाद बन चुकी हैं। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हवाई जहाजों के सरकारी मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने अपने ट्विन सीटर हल्के जंगी तैयारे तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारे को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस के बाद आज बेंगलुरु में भारतीय फिजाइया को सौंपा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और शहरी आवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू ने इससे मुतालिक तकरीब में शिरकत की। HAL ने दो तेजस और तरबियती तैयारे भारतीय फिजाइया के हवाले किए। वहीं HAL ने अगली नस्ल के 4 ध्रुव हेलीकॉप्टरों को सरकारी कंपनी पवन हंस लिमिटेड को सौंपा। इसके अलावा HAL ने पहला HTT-40 बुनियादी तरबियती तैयारा भी भारतीय फिजाइया के हवाले किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तैयारे को अंकुर का नाम दिया।
2: आज हम एक साथ 3 इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला इंडिजनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
1: तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर खुद इन्हेसारी पर जोर दिया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि भारत इस शोबे में आलमी कायद के तौर पर उभरेगा। जनाब सिंह ने स्वदेशी दिफाई और शहरी हवाबाजी टेक्नोलॉजियों की कोशिश के लिए हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सताइश की। जनाब सिंह ने नौजवान इंजीनियरों और डिजाइनरों को मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजियों से मुतालिक चैलेंज को कबूल करने और भारत को आलमी सतह पर मुकाम दिलाने में मदद करने की अपील की। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि निजी और अवामी शोबे को हरीफ बनने के बजाय शराकत दार के तौर पर काम करना चाहिए। जनाब सिंह ने कहा कि भारत की दिफाई पैदावार और बरामदात में खातिरखा इजाफा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज IBM सेमीकंडक्टर के जनरल मैनेजर डॉ मुकेश खरे से मुलाकात की। ये मुलाकात आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के तनाजुर में हुई। इस दौरान दोनों ने भारत की चिप डिजाइन तरजीहात, जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के मौके और भारत में एडवांस्ड चिप साजी के से मुतालिक IBM के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। जनाब वैष्णव ने LAM रिसर्च के COO सेशा वर्दराजन से भी मुलाकात की और भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को मुस्तहकम करने के कंपनी के मंसूबों पर बातचीत की। इंतखाबी कमीशन ने आज तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हरीफ धड़ों को नए नाम और नए इंतखाबी निशानात अता किए। इस फैसले के बाद ममता बनर्जी और अरूप राय के जेर क्यादत धड़े ज़िमनी इंतखाबात में नई शनाख्त के साथ हिस्सा लेंगे। अरूप राय के जेर क्यादत ग्रुप को नया नाम डेमोक्रेट तृणमूल कांग्रेस दिया गया और उनका इंतखाबी निशान लिफाफा होगा। वहीं ममता बनर्जी के जेर क्यादत दूसरे ग्रुप का नाम बदलकर ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस रखा गया है, जबकि उनका इंतखाबी निशान एक फुटबॉल खिलाड़ी होगा। हुकूमत ने थोक ग्राहकों के लिए चीनी जखीरा करने की हद 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ताहम ये रियायत इस शर्त के साथ दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की हद से ज्यादा रखा जाने वाला चीनी का जखीरा सिर्फ पेशगी मंजूरी स्कीम और टेरिफ रेट कोटा के तहत दरामद की गई चीनी से हासिल किया जाएगा। सारिफिन के उमूर, खुराक और सरकारी निजाम तकसीम की वजारत ने कहा कि खुली मार्केट से खरीदी जाने वाली चीनी के जखीरे की हद में कोई तब्दीली नहीं की गई है और यह सिर्फ 15 दिन की खपत तक महदूद रहेगा। यह फैसला हुकूमत की जानिब से चीनी के बड़े ग्राहकों के साथ तफसीली मुशावरत के बाद किया गया। एशियाई खेलों में खवातीन की भारतीय टीम मेजबान जापान को 8 विकेट से बआसानी शिकस्त देने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई है। निशिन में आज खेले गए मैच में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हरा दिया। इस क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और 19 ओवर्स और 5 गेंदों में जापान की पूरी टीम को महज 57 रन पर आउट कर दिया। इस दौरान भारतीय गेंदबाजों श्री चरनी ने 4 विकेट और शेफाली वर्मा ने 2 विकेट लेकर लगातार दबाव बनाए रखा। जवाब में भारतीय टीम ने सिर्फ 5 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर यह निशाना हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा ने 15 गेंदों में 40 रन बनाए और वो नॉट आउट रहीं। हरमनप्रीत कौर की क्यादत वाली भारतीय टीम का मुकाबला निची नागोया एशियाई खेलों के दूसरे सेमीफाइनल में इतवार के रोज बांग्लादेश से होगा।

वहीं पहला सेमीफाइनल उसी रोज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, अंडमान और निकोबार जजायर और शुमाल मशरक भारत के कई हिस्सों में कल शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा कि कल से मगरबी राजस्थान के कुछ हिस्सों से जुनूब मगरबी मानसून के रुख्सत होने के लिए हालात साजगार हैं। दिल्ली के लिए महकमे मौसमियात ने कल मौसम के जुजवी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में कल ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और कम अज़ कम दर्जा हरारत 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने में ताउन जारी रखने के अज़्म का इरादा किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। भारत ने बहिरे अहमर खित्ते में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और सऊदी अरब की खुद मुख्तार सरजमीन पर हमले की मजम्मत की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय फिजाइयों को दो सीटों वाले तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारे सुपुर्द किए हैं। और इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के हरीफ धड़ों को अलग अलग नाम और इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

ये वाला रेफ्रिजरेटर देखिए मैडम, ये इसका अंडों का रैक, और इस शेल्फ को जरा सरका दें तो लंबी बोतल भी फिट हो जाएगी मैडम, सॉरी, और ये इसका रोल बॉन्ड फ्रीजर, बस आधे टाइम में बर्फ तैयार, सॉरी। और

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी।

0: श्री नायर ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य में आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तानी नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप राय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रिजीनगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए मतदान कल संपन्न हो गया। चुनाव के लिए कुल 1000 EVM का प्रबंध किया गया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटों की गिनती आज नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीत का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चढ़नी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। जापान की टीम 19.5 ओवर में 57 रन पर सिमट गई। श्री चढ़नी ने 10 रन देकर 4 विकेट लिए, जो T20 क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। शेफाली वर्मा ने 13 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अब भारत का सामना रविवार को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi yesterday received a telephone call from President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE comprehensive strategic partnership, including in the areas of energy, defense, technology, investment and health. The UAE president conveyed warm greetings

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 1:10 और ये समय है कार्यक्रम गीत सुनहरे का, जिसमें आप सुनते हैं पुरानी फिल्मों के नायाब गीत। आइए सुनते हैं ये गीत KL सहगल साहब की आवाज में।

क्या खत्म न होंगे कभी ये गम के फसाने फुरकत के जमाने, क्या खत्म न होंगे कभी ये गम के फसाने।

0: फिल्म आह से ये गीत आइए सुनते हैं श्रोताओं लता मंगेशकर की मधुर आवाज में।
1: तुम्हारे हाथों में मेहंदी रचेगी, तुम्हारी मुरादें भर आएंगी, तुम्हारे सपने सच्चे हो जाएंगे। उस दिन दीदी,

अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म श्री 420 से, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और साथियों की आवाज़ में।

0: इसी के साथ श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अब से थोड़ी देर में रात्रि के ठीक 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया

0: का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इसमें ममता बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रेजी नगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए मतदान कल संपन्न हो गया। चुनाव के लिए कुल 1000 EVM का प्रबंध किया गया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटों की गिनती आज नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम प्राप्त होने के बाद कोई जीत का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आइची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजेंद्र पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक रहेंगे। मनु भाकर ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीत का इतिहास रचा था। तजेंद्र पाल ने 2018 के जकार्ता और 2022 के हांगचौ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। उधर एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब भारत का सामना रविवार को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi yesterday received a telephone call from President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership, including in the areas of energy, defense, technology, investment and health. The UAE president conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. Mr. Modi appreciated the participation of Crown Prince Sheikh Khalid in the BRICS summit and the UAE's cooperation and partnership in achieving substantive outcomes under India's presidency. India has expressed deep concern over the escalating security situation in the Red Sea region. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal condemned the attacks on Saudi Arabia's sovereign territory, including attacks

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20वें रोजगार मेले में अलग अलग सरकारी संगठनों के नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को भी संबोधित करेंगे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: हम एक साथ 3 इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के कोहाट जिले में एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 पुलिसकर्मियों सहित 21 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा घायल हो गए। कोहाट अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कम से कम 73 पुलिसकर्मी और 30 नागरिक घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि धमाका शुक्रवार की नमाज के दौरान हुआ। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजेंद्र पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज का ही ध्वजवाहक रहेंगे। मनु भाकर ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रचा था। तजेंद्र पाल सिंह ने 2018 के जकार्ता, 2022 के हांगचाओ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफन मौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। जापान की टीम 19.5 ओवर में 57 रन पर सिमट गई। श्री चरणी ने 10 रन देकर 4 विकेट लिए, जो T20 क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। शेफाली वर्मा ने 13 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अब भारत का सामना कल बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi yesterday received a telephone call from President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE comprehensive strategic partnership, including in the areas of energy, defense, technology, investment and health. The UAE president conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. Mr. Modi appreciated the participation of Crown Prince Sheikh Khaled in the BRICS summit and the UAE's cooperation and partnership in achieving substantive outcomes under India's presidency. India has expressed deep concern over the escalating security situation in the Red Sea region. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal condemned the attacks in Saudi Arabia's sovereign territory, including attacks targeting civilians and economic assets. He said India had also issued a statement following the attempted attack on the holy city of Mecca.
3: Such attacks, I need not elaborate or reiterate, they vitiate the regional security, they impact or undermine regional peace and security, and also threaten freedom of navigation through the Bab al-Mandeb. And obviously, for various reasons, this is totally unacceptable to us. We hope that there is early restoration of peace and stability in the region.
2: On the collision between a Pakistani Navy vessel and an Indian warship,

अभी आप सुन रहे थे गज़ल गीत का ये प्रोग्राम, जिसमें आपने जगजीत सिंह, आशा भोसले, पंकज उदास, चंदन दास की आवाज़ में कुछ चुनिंदा गज़लें सुनी।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं सरस्वती राजगोपालन।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे सरस्वती राजगोपालन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सरस्वती राजगोपालन प्रस्तुत करेंगी श्री दयानंद सरस्वती की रचना भो शंभू।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अब सुनते हैं सरस्वती राजगोपालन से सी राजगोपालाचार्य की रचना कुरई ओनरुम इल्लई।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सरस्वती राजगोपालन से अन्नमाचार्य की रचना नारायण ते नमो।

0: और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कलाकार थे सरस्वती राज गोपालन। मृदंगम पर साथ थे मनोहर बालाचंद्रन और घाटम पर वरुण राजशेखरन। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सरस्वती राजगोपालन का वीणा वादन। मृदंगम पर साथ हैं मनोहर बालचंद्रा और घाटम पर वरुण राजशेखरन।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुना सरस्वती राजगोपालन का रुद्र वीणा वादन। मृदंगम पर साथ थे मनोहर बालचंद्रा और घाटम पर वरुण राज के शेखरन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 सितंबर 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए जान ले आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के बाद कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज का विषय है कंधे की मूवमेंट और ताड़ासन। 5:20 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे देशभक्ति गीत। कार्यक्रम स्वर रंजनी का समय रहेगा 5:30। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नकुल मल्होत्रा का गायन राग ललित। इसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा 6:10 पर। 6:40 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय है ग्रामोदय पर गांधी जी के विचार। रामचरित मानस का समय है 6:45 पर। संस्कृत हिंदी अंग्रेजी समाचारों के बाद कार्यक्रम संगीतिका का समय रहेगा 7:10 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे तब्बू के गाए कुछ भजन। गीतों भरे गुड मॉर्निंग प्रोग्राम आप सुनेंगे 7:30 पर। इसके बाद समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज के बाद सुनेंगे उर्दू न्यूज। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे।

0: 8:45 पर। कार्यक्रम धरती आकाश का समय है 9:15। इस कार्यक्रम में आज का विषय है हाइड्रोजन ट्रेन विकसित भारत की स्वच्छ रेल यात्रा। 9:30 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे कार्यक्रम मिट्टी दी महक। 10 बजे हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के बाद 10:10 पर सुनिए कार्यक्रम आपकी पसंद। इसके बाद हम आपके लिए प्रसारित करेंगे 11:10 पर कार्यक्रम सबरस। सुर मंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम का समय रहेगा 11:30। 12:10 पर सुनिए महिला कार्यक्रम घर आंगन। आज दोपहर 1:10 पर कार्यक्रम सुनिए एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है 12 o'clock। कार्यक्रम एक ही कलाकार, इसका समय रहेगा 2:30 पर, और आज कलाकार हैं ताहिर हुसैन। ब्रज माधुरी, इस कार्यक्रम का समय रहेगा 3 बजे। ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे साथ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी ही देर में आप अंग्रेजी और हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20वें रोजगार मेले में अलग अलग सरकारी संगठनों के नव नियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नव नियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 मॉडल के प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
2: हम एक साथ 3 इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने। पहला, इंडिजनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
1: सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनिए कंधे की मूवमेंट और ताड़ासन के बारे में।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी चौखन, आपके योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे शोल्डर जॉइंट्स प्रॉब्लम पर। शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो बहुत ही मोबाइल जॉइंट है और सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी जॉइंट में पाई जाती है। इसकी मोबिलिटी के साथ साथ शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसके लिए शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रतिदिन क्या जरूरी है, योग करना जरूरी है। शोल्डर जॉइंट की समस्या जैसे शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में भी शोल्डर प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। शोल्डर जॉइंट की सर्जरी होने के बाद भी शोल्डर जॉइंट मूवमेंट में कई बार रुकावट आ जाती है। इन समस्याओं से निदान पाने के लिए आप योग में शोल्डर जॉइंट के लिए सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। आज मैं आपको एक सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। श्वास छोड़ते हुए यानी ब्रीद आउट करते हुए दोनों कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाएं। अब श्वास भरते हुए यानी ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्र आकार घुमाएं। ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर लेकर जाएं और ब्रीद आउट करते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। दोनों कोहनियों को चेस्ट रीजन के सामने स्पर्श करने की कोशिश करें। पीछे की ओर भी कोहनियों को खींच कर घुमाएं। इस प्रकार पूर्ण रूप से दोनों कोहनियों को पहले 4 से 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं।

यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 4 से 5 बार घुमाएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। इस योगिक क्रिया के अभ्यास में शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और उसमें होने वाले रक्त संचालन भी बढ़ता है। अगर आप यह अभ्यास प्रतिदिन मॉर्निंग में करते हैं तो आपके शोल्डर जॉइंट हेल्दी रहता है और उसमें होने वाली रुकावट से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज हमने शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसकी मांसपेशियों को आप किस प्रकार मजबूती प्रदान कर सकते हैं एक सिंपल छोटी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया के साथ, जिसको हम शोल्डर मूवमेंट्स कहते हैं। तो आज के लिए हमारी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया थी शोल्डर मूवमेंट्स। नमस्कार।